सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: श्रोतागण सुप्रभात, प्रणाम। यह रेडियो रिमझिम 90.4 MHz आ कार्यक्रम चल रहल बा आपन दे आपन देखभाल। तो दोस्त लोग रहुआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम लेके आवेली राउर दोस्त दीपाली, जेमे हम बतावेनी रहुआ स्वास्थ्य की और बेहतर बनावे खातिर कुछ हर्बल उपाय। अब श्री गणेश कही जाओ आज के शो के। दोस्त लोग आज हम बताएं सबसे पहले गला के रोग से निजात पावे के कुछ घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग हमनी में से बहुत लोग के जैसे खासकर बच्चा के अक्सर सर्दी खांसी हो जाला। ये बहुत ही साधारण बीमारी होला व कुछ दिन रह के ये ठीक हो जाला। ई एगो सामान्य बात है, परंतु एके दुर्गामी परिणाम भयावह होला। वो है गला के इन्फेक्शन। परंतु हृदय के बल्ब तथा किडनी एके शिकार हो सकेला। एगो विशेष कीटाणु के खिलाफ शरीर के प्रतिरोधक शक्ति द्वारा बनावल होखल इम्यून कॉम्प्लेक्स हृदय के बल्ब या किडनी के ऊपर अटैक कर देला। ऊपर होखल असर के कारण उनके द्वारा रक्त के शुद्धिकरण के क्रिया पर असर होला। एके नेफ्राइटिस भी कहल जाला। ई वजह से गुर्दा कुछ समय खातिर फेल हो जाला, मूत्र कम बनेला और उनमें खून भी आवेला। हाथ पैर में सूजन आवेला और ब्लड प्रेशर बढ़ जाला। ज्यादातर केस में ये तकलीफ उपचार से ठीक हो जाला, किंतु बार बार के इन्फेक्शन से या एक बार में ही ज्यादा संक्रमण होके तक गुर्दा भी फेल हो सकेला। वही तरह हृदय के बल्ब पर एकर असर होला, तो कालांतर में बल्ब या तो सिकुड़ जाला या ओकर कंपन गति कमजोर हो जाला। जेकरा वजह से खून के संचालन में बाधा आवेला, खासकर बाएं तरफ के बल्ब में ये खराबी होला, जिसे माइट्रल या एरोटिक कहल जाला। कई बार हृदय ई वजह से फूले लगेला या खून के प्रेशर उनमें बढ़े लगेला। अतः जब भी गला खराब हो उनके गंभीरता से ली। दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक के पूरा मात्रा में सेवन करी। वैक्सीन लगावे से भी इन्फेक्शन के रोकथाम कही जा सकेला। खान पान के तरफ ध्यान दी, विटामिन सी के सेवन करे से बीमारी से रहुआ बच सके। तंग बस्ती में रहे वाला तथा जहाँ पर वायु प्रदूषित होके वहाँ ये बीमारी ज्यादा होला। अगर हृदय की बल्ब खराब हो गई हो के तो लंबा समय तक हृदय रोग के दवाई के साथ पुनः इन्फेक्शन ना हो ये खातिर पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निश्चित मात्रा में समय समय पर लगावे के पड़ेला। अगर इसे एलर्जी हो के तो अन्य एंटीबायोटिक के सेवन करे के चाहिए। हृदय के चेकअप से बल्ब के स्थिति के अंदाजा लगावल जा सकेला। कलांतर से अगर खराबी ज्यादा होके तो बल्ब के ऑपरेशन भी करे के पड़ सकेला। अतः सावधानी बरती और गला के खराबी से बची। तो दोस्त लोग चली अब हम बताएं महिला लोग के ब्यूटी खातिर कुछ नुस्खा। खोजल जाए तो खूबसूरती के निखारे खातिर आजकल बाजार में जितना उत्पादन बा वैसे कहीं अधिक विकल्प प्राकृतिक चीज से रूप निखारे खातिर मिल जाए। विश्व भर में आज भी कई पारंपरिक नुस्खा और प्राकृतिक चीज सौंदर्य के बरकरार रखे खातिर इस्तेमाल कई जाला। वैसे आज भी प्राकृतिक चीज के कोनो तोड़ नहीं के ये भी मानल जाला कि एक इस्तेमाल से कोनो साइड इफेक्ट ना होला और ये आसानी से हमनी के बजट में भी आ जाला। तो चलिए अब हम बता दी वो घरेलू नुस्खा जिसे रउआ आपन खूबसूरती के संवार सके। शहद से भी त्वचा दम केला। शहद के ओरिजिन पोलैंड से मानल जाला। दरअसल यूरोप में कड़ाके की सर्दी होके के कारण त्वचा के विशेष देखभाल की जरूरत होला। सर्दी में चमकत त्वचा पावे खातिर 30 मिनट तक चेहरा पर शहद लगा के रखी। चेहरा के साथ रवा होट पर भी शहद लगा सकता नहीं, इसे होट की कोमलता भी बरकरार रही। यदि राउर त्वचा शुष्क और अत्यधिक संवेदनशील होके तो शहद के हल्का गर्म करके लगाई। कोलेस्ट्रॉल ऑयल के प्रयोग से रवा अपना आँख के पलक के भी सुंदर बना सकता नहीं। और लंबा बनावे खातिर कैस्टर ऑयल उपयोग में लाई। प्रतिदिन रात के सूते से पहले पलक पर कैस्टर ऑयल के लगाई। स्प्रंग वाटर के विकल्प के तौर पर रुआ बॉटल वाला मिनरल वाटर भी इस्तेमाल कर सकता नहीं। मिनरल वाटर से चेहरा धोए पर ताजी के एहसास तो होला ही, साथ ही इसे चेहरा पर मॉइस्चराइजर बनल रहेला और सूजन व चेहरा पर आई लालीपन दूर होई। दोस्तों नारियल के तेल उपयोग करे से राउर बाल भी रेशम जैसन बनल रही, जिसे भारतीय महिला के घना लंबा और काला बाल के खूबसूरती के राज है नारियल तेल। नारियल तेल के हल्का गर्म करके सिर में अच्छा से मालिश करी और सुबह सिर धोली। बाल के स्वस्थ और चमकदार रखे के इस सबसे कम खर्चीला उपाय है। बाल के समय समय पर तेल से मालिश करे से दुमोहा बाल की समस्या से भी निजात मिलेला। हो सकेला राउर ये जानकारी थोड़ा अजीब लागे, लेकिन ये सच है कि ब्राजील के महिला अपना शरीर पर आ गई थोड़ा सा वसा के कम करे खातिर सैंड यानी रेत के इस्तेमाल करेला लो। महिला सैंड यानी बालू के अपना शरीर पर रगड़े लालो। एकरा के एक तरह से बालू स्पा भी कहल जाला। वहां के महिला के मानल बा की बालू के शरीर पर रगड़े से त्वचा के कुछ गर्मी मिलेला और इसे शरीर के अतिरिक्त वसा कम होला और साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार बनेला। बाल के चमकावे खातिर व्हाइट टी भी बहुत कारगर है। जैसे चाइना के महिला अपना बाल के चमकदार बनावे खातिर व्हाइट टी के भी इस्तेमाल करेला लो। पाए जाए वाला कैमेलिया के पौधा में व्हाइट टी मिलेला। ये पौधा के कली पूरा तरह खुले से पहले व्हाइट रंग के नजर आवेला। इसे एके व्हाइट टी कहल जाला। चाइना में महिला व्हाइट टी के रोजमेरी ऑयल के साथ इस्तेमाल करेला लो। व्हाइट टी और रोजमेरी ऑयल बाल के कंडीशनिंग में इस्तेमाल कई जाला। इसे बाल स्वस्थ और चमकदार नजर आवेला। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही, काहे कि अब समय हो गई बा कि हम ली रउआ से जाए के अनुमति। हंसी खुशी के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल, आजमाई ई सब नुस्खा के। नमस्कार।
4: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथ कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
11: मैंने धरती को देखा है, मैंने बदलते समय को देखा है, हर पल बदलती नियत, चेहरे और लोग देखें, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो कभी नहीं झपके। मैं सदा ऊपर तनी हुई वो छत हूं जो कभी नहीं झुकी। मैं आकाश हूं और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, और वो कहानी है महाभारत। महाभारत जो द्वापर में भी हुई और आज कलयुग में भी होती है, आपके भीतर हर पल, जिसके सारे पात्र आप में से हर एक के अंदर जीते हैं। जब आप सच को नहीं जान पाते तो आप धृतराष्ट्र हैं, और जब सच को जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं तो गांधारी। जब आप रिवेंज की आग में अपना सारा जीवन झोंक देने को तैयार हो तो आप शकुनी हैं, और जब आप ये जानते हुए भी कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और अपने आप को नहीं रोकते, तब आप कर्ण हैं। जब आपकी अच्छाई आपका अहंकार बन जाए तब आप भीष्म हैं। अर्जुन भी हैं आप, और वो कृष्ण भी जो आपको रास्ता दिखाएगा। पर क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आपके भीतर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम टकमगाते हैं?
12: महीदेव, ध्यान से सुन लो महीदेव, आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे द्वार पर सर पटकता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और तुम मंदिर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते रहे, पर आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे द्वार पर पैर नहीं रखेगा महीदेव, नहीं गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने, बस बस बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, बहुत कर ली तुम्हारी वंदना, तुम्हारी चाकरी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, पराजय, अपमान, कुंठा, इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा महीदेव, अपनी भुजाओं के बल से लिखेगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास है। अब उन तुच्छ पांडवों का साहस नहीं होगा कि वो दुर्योधन का उपहास कर सके। आज तुम्हारे सामने इस विदारक के शंखनाद से उन पांडवों का अंत करने का प्रण लेता है ये दुर्योधन।
13: पांडे, पांडे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो, ऐसे तो प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जला कर राख कर देगी।
12: नहीं मामो, नहीं, जब तक मैं पांडवों को खाक होते नहीं देख लूं, तब तक ये आग ठंडी नहीं होगी मामा।
13: शव खोदेंगे तो दुर्गंध उठेगी, इसलिए कहता हूं कि मिट्टी डालो, मिट्टी डालो।
12: मिट्टी डालो, तुम्हारे कलेजे को भी पांचाली की हंसी ने ऐसे ही छीला होता ना मामा?
13: छीला है भांजे, मेरे हृदय को भी छीला है उसकी खिलखिलाहट ने, पर क्रोध में किया फैसला सदा पछतावा देता है। यदि तुम पंचाली की आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हो तो धीरे से काम लो भांजे, मेरी चौसर की चाल खाली नहीं जाएगी। वो छलिया कृष्ण अब तक तो द्वारका निकल गया होगा, मतलब अब पांडव को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा वहां पर, बस वो बेवा कूफ विदुर कोशिश कर सकता है। अरे उस पे मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो।
14: कहाँ हो अर्जुन? रथ तैयार है।
15: मैं तो तैयार हूँ भैया, नकुल और सहदेव भी आ रहे हैं, पांचाली शायद भीम के साथ आ रही है।
14: पांचाली? पर पांचाली तो रजस्वला है, इस हाल में उसका हस्तिनापुर चलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भीम भी पहले मुझे निमंत्रण ठुकराने के लिए कहता है और अब।
15: मैंने कहा तो और भी बहुत कुछ था, पर किसी के पास उसे सुनने का समय ही कहाँ था तब। तब तो धर्मराज होने के अहंकार ने किसी को ये भी सोचने का समय नहीं दिया कि ये द्यूत का निमंत्रण हमारी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का उस नीच दुर्योधन का महाषड्यंत्र है। ये भीम आप जैसा महाविद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता ना सही, पर कम से कम अपनी बर्बादी की आहट तो समझ ही सकता है।
16: इंद्रप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ना तो धर्मराज को उनके भाई दिखते होंगे और ना ये पांचाली, और दिखे भी क्यों जब धर्मराज स्वयं अपने सर्वनाश का संकल्प लिए बैठे हों, तो तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कैसे समझ में आएगी उन्हें भीम? हम जैसे आम जनों को क्या समझ राजनीति की? आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि काशी, पांचाल, द्वारका और मगध जैसे विशाल साम्राज्य उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में हम तो उन्हें बहुत बौने लगते होंगे ना।
14: भीम, पांचाली, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो मेरे अपने हो। भले ये सारा संसार मेरे निर्णय पर संदेह करे, पर कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह महामुनि व्यास की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करके कुरुवंश के बीच इस बैर को मिटा सकूं। तुम सभी तो वहीं थे जब इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करते समय महामुनि व्यास ने कहा था कि महासमर का केंद्र मैं ही रहूंगा, और यदि मुझे केंद्र में रहना ही है तो मैं आगे बढ़कर उसका सामना क्यों ना करूं।
16: पर केशव ने भी तो कुछ कहा था, और केशव के वो वचन इस संसार का अंतिम सत्य है।
14: याद है पंचाली, मुझे उनके एक एक शब्द याद है।
17: कृष्ण की बात याद रखना धर्मराज, यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये सृष्टि भाग्य नहीं कर्म से चलती है। इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य केवल तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा वो कर्म इस संसार का वो अंतिम सत्य है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है।
14: और मैं भी बस अपना कर्म ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनहोनी को रोकना चाहता हूं।
16: परंतु केशव ने ये तो नहीं कहा था कि जानबूझकर अपने विनाश को बुलाना भी कर्म है।
18: महाराज, क्या हुआ? महाराज, आप बड़े अशांत लग रहे हैं।
19: आश्चर्य है विदुर, आश्चर्य है कि जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र ऐसा स्वप्न कैसे देख सकता है।
18: पर आपने ऐसा क्या देख लिया महाराज?
19: बहुत सारे योद्धा ढोल नगाड़ों की थाप पर बेसुध नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को मशाल बना रखा था विदुर। उनके मुंड आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें थोड़ी भी पीड़ा हो रही है, बल्कि वो तो आनंद से नाच रहे थे। बताओ विदुर, बताओ क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? हाँ,
18: मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको अप्रिय लगे।
19: मैं अपने इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता हूं विदुर।
18: मुझे विवश ना करें महाराज।
19: रुको विदुर, तुम्हें बताना होगा, ये मेरा आदेश है।
18: तो सुनिए महाराज, ये द्यूत कुरुवंश का नाश कर देगा। आपने द्यूत का निमंत्रण पांडवों को नहीं काल को भेजा है, काल को।
19: विदुर,
18: आपके इस निमंत्रण की आंधी सारे कुरुवंश को उड़ा कर ले जाएगी महाराज, और आपका ये स्वप्न उसी काल के आगमन की चेतावनी थी।
19: तो तुम मुझे ये अब बता रहे हो जब सब कुछ हाथ से निकल चुका।
18: यदि मैं निमंत्रण भेजने से इनकार कर देता महाराज, तो क्या आप दुर्योधन को ना कह पाते?
20: यदि तुम्हें ज्ञात था युधिष्ठिर कि दुर्योधन तुम्हारा भला नहीं सोचने वाला, तो तुमने द्यूत का निमंत्रण स्वीकार ही क्यों किया? क्यों चले आए यहां? जबकि ये तुम भी जानते हो कि जब तक दुर्योधन तुम्हारी एक एक वस्तु छीन कर तुम्हें श्रीहीन नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा।
14: पितामह, यदि मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देता तो दुर्योधन हमारे विरुद्ध किसी भी बहाने से युद्ध की घोषणा कर देता। इस स्थिति से तो ये द्यूत ही सही है।
20: तुम जाओ युधिष्ठिर, जाओ। द्यूत सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, पर ये याद रखना कि तुम उसे झुटलाने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर पहले से ही तय करके बैठा है।
13: महाराज धृतराष्ट्र पितामह भीष्म और सभासदों, मैं कुमार दुर्योधन और कुलराज की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पांडवों का आभारी हूं जिन्होंने आपसी सद्भाव के लिए कुमार दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने भांजे दुर्योधन को समझाया कि पांडवों और कौरवों के साथ होने में ही हम सबका हित है। अब मैं महाराज की ओर से प्रेम और सद्भाव के इस आयोजन को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पांडव श्रेष्ठ, आप सभी के स्वागत में भांजे दुर्योधन ने दरबार में नृत्य संगीत की सुंदर व्यवस्था की है, आनंद लीजिए।
0: तो भैया मामला ऐसा रहा कि देर रात तक नाच गाना बजता रहा, सभा चलती रही। जहाँ पांडवों का मन कभी अनुभव करता था कि शायद दुर्योधन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन्हें यह भी लगता कि दुर्योधन और शकुनी के मुंह से टपकती है इतनी मिठास कहीं उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। उधर पिछली रात के बुरे सपनों ने इस रात भी पांचाली का पीछा नहीं छोड़ा। अब सपने कहां पीछा छोड़ते हैं। सुबह हुई तो पांडवों को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया।
21: भैया भीम, देखिए कितनी विशाल चौसर तैयार की है इन्होंने।
15: ऐसे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है सहदेव, ये बात लिख कर रख लो कि हमारी बर्बादी का प्रपंच इसी चौसर पर रचा जाना है।
22: अरे भैया भी आइए आइए, पधारी, यहाँ इस आसन पर बैठिए, ये विशेष आपके लिए बनाई है मजबूत लकड़ियों से। प्रणाम बड़े भैया युधिष्ठिर, प्रणाम। अच्छा, पांडवों की ओर से तो आप ही चौसर खेलेंगे ना, तो आप यहाँ आइए मध्य स्थान पर फिराजी।
14: अवश्य, तुम्हारी ओर से कौन खेलेगा दुर्योधन?
22: अब चौसर के खेल में तो आपकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता भैया, तो मेरी तो बिसाती कहाँ है। ऐसे एक तरफा खेल में किसी को आनंद नहीं आएगा ना, इसलिए मेरी ओर से मेरे प्रिय मामा शकुनी खेलेंगे।
14: तो चलिए मामा, पहली चाल आप चलिए।
13: तुम कहते हो तो मैं ही चलता हूं। युधिष्ठिर, दाव पर क्या लगाते हो?
14: 100 घोड़े।
22: तो मामा, मेरी ओर से भी 100 घोड़े।
13: तो 100 घोड़ों के लिए आ जा। 6। हाँ, 2। पासे बेईमान, बेच दिया ईमान।
14: तो मैं 6 लाकर दिखाता हूं मामा। 6।
23: वाह वाह भैया वाह,
21: अद्भुत भैया अद्भुत।
23: देखा भीम, तुम बड़े भैया को साधारण खिलाड़ी मान रहे थे ना, अब देखो उन्होंने पहली बाजी ही जीत के साथ शुरू की है।
0: तो भैया, जब सफलता आसानी से हाथ लगते दिखे तो समझ जाओ कि सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि जीवन के सागर में मोती आसानी से नहीं मिलते, गोते तो लगाने ही पड़ते हैं। भैया, क्या कभी आपके कदम भी शुरुआती सफलता में बहके हैं? ठीक है, किसी को हमेशा संदेह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहना हमें संकट से बचने के रास्ते देता है। एक बात बताते हैं आपको, वैसे भीम खामखां परेशान नहीं था भैया, वो दुर्योधन की बदनीयति जानता था, लेकिन फिर भी उसने युधिष्ठिर को इस जाल में फंसने से रोका नहीं। अभी सवाल तो बनता है, इस सवाल का क्या है, मन हुआ बन गया, जवाब जवाब भी बन ही जाएगा। सुनते रहिए महाभारत।

0: टक टक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: वाला ही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। प्रति प्रिंट आउट कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-8697।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। नहाए खाए के साथ तीज का त्योहार शुरू, डेंगू के बढ़ते खतरे से लोगों में हुई परेशानी, आंगनवाड़ी पर गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, यूरिया के कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, शराब और धोखाधड़ी के मामले में अलग अलग जगहों से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। 16 श्रृंगार कर महादेव को प्रसन्न करने वाला तीज रविवार को नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गया। सोमवार को महिलाएं व्रत रखेंगी। इस दौरान महिलाएं साड़ी से लेकर श्रृंगार तक की सामग्री खरीदने के लिए आज विभिन्न दुकानों पर पूरे दिन खरीदारी करती हुई दिखाई दी, जिसके वजह से शहरों में भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लग गई थी। फल और अन्य पूजा के सामग्री के दुकानों पर भी आज पूरे दिन भीड़ भाड़ देखा गया। साड़ी और श्रृंगार के साथ ही महिलाएं राजस्थानी चूड़ी का सर्वाधिक खरीदारी कर रही थी। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार कई कंपनियों की साड़ी भी खरीद रही थी। कपड़ा बाजारों से लेकर चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार तथा पूजन सामग्री की दुकानों पर आज पूरे दिन रौनक रहा। बदलते हुए मौसम के वजह से अब डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में आधा दर्जन लोगों में डेंगू की पुष्टि होने की बात भी सामने आई है। शहर के हनुमानगढ़ी की मुन्नी कुमारी, सरिया वार्ड नंबर 1 की रंजू देवी और बसडीला के सुनील कुमार समेत लगभग आधा दर्जन मरीजों में डेंगू का सिम्टम दिखाई दिया। स्थिति बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए कुछ को गोरखपुर रेफर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि भोरे के सबिया निवासी अमन तिवारी के 8 वर्षीय पुत्र समृद्ध तिवारी को भी डेंगू का शिकायत मिला। परिजन इन्हें स्थानीय क्लिनिक में इलाज के लिए ले गए थे। शुरुआती स्तर पर डेंगू की जांच नहीं कराई गई। इलाज के बावजूद जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन गोरखपुर ले गए, वहां डेंगू की पुष्टि हुई। स्थिति गंभीर होने के वजह से इलाज में लोगों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से डेंगू के प्रति अलर्ट रहने का अपील कर रहा है। अपने आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर और अन्य जगहों पर जमे पानी को बदलते रहें, साथ ही सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और फूल फूल बांह के कपड़े पहन कर ही घूमें। बुखार जैसे ही समझ में आए तो उसको जांच कराएं। सदर अस्पताल में सभी जांच निःशुल्क हैं, इसलिए अगर बुखार या किसी तरह का कोई गड़बड़ी दिखता है तो तुरंत अस्पताल ले जाएं, जहां जांच करने के बाद सही समय पर सही इलाज शुरू हो जाने से स्थिति भयावह नहीं होगी। अधिकारियों ने सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने कहा कि बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में अब तक आधा दर्जन मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई है। शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बावजूद नियमित फॉगिंग को लेकर नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में फॉगिंग कराए जाने की सूचना मिलती है, लेकिन मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों और उन स्थानों पर नियमित फॉगिंग नहीं हो रही है जहां मच्छरों का प्रकोप अधिक है। नालियों और कहीं भी जमा पानी इत्यादि के आसपास फॉगिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, इसके कारण मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों ने शहर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाने की मांग की है। जिले के विभिन्न निजी पैथोलॉजी सेंटरों में भी बुखार से पीड़ित मरीजों की डेंगू की जाँच डॉक्टर करवा रहे हैं। कई मरीजों में रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड में मरीजों की संख्या कम बताई जा रही है, इससे डेंगू के वास्तविक प्रकोप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू संक्रमण के गंभीर मामलों में शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं, लीवर पर असर पड़ सकता है और कुछ गंभीर मरीजों में किडनी समेत अन्य अंगों में भी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। डेंगू की आड़ में जाँच के नाम पर सावधानी बरतने की भी जरूरत है। बेहतर जांच और बेहतर रिपोर्ट से ही सही समय पर सही इलाज हो सकेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गोपालगंज के द्वारा विजयपुर परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99 पर पोषण माह के परिपेक्ष में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलित कर सभी को लाभान्वित किया गया। श्रीमती रंजना कुमारी द्वारा पोषण से संबंधित एवं गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए उसे गर्भवती और उनकी सास को जानकारी दी गई। गर्भावस्था में सामान्य से 350 कैलोरी अतिरिक्त रोज लेने की बात बताई गई। दिन में 3 बार मुख्य भोजन और 2 बार हल्का नाश्ता करने की भी बात कही गई। दाल, हरी पत्तेदारी सब्जियां, अंडा, दूध, मौसमी फल, मोटा अनाज जरूर खाने के लिए सलाह दिया गया। साथ ही 180 दिन तक रोज 1 आयरन फॉलिक एसिड की गोली भी रात में खाने के बाद नींबू पानी या आंवला के रस के साथ लेने की सलाह भी दी गई। किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और खरीफ फसल की तैयारी को लेकर कृषि मंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। कृषि से जुड़ी योजनाओं और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद की कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट है और कहीं भी खाद की कालाबाजारी करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूरिया की बिक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से यूरिया के लिए 266 रुपए से अधिक नहीं ले सकता है। अगर इससे अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाले को पकड़ा गया तो उन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक बिक्री केंद्रों की लगातार अब जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी शुरू कर दी गई है। किसानों को भी किसी भी परिस्थिति में अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। किसानों को भी कहा गया है कि अगर कहीं भी यूरिया या खाद की कालाबाजारी होती है तो आप तुरंत जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन हुआ, जिसमें सूचीबद्ध असामाजिक तत्वों को थाने पर बुलाकर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। साथ ही आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने और शराब तस्करी तथा अवैध शराब निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए और क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी चौकीदारों को निर्देशित किया गया। माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान दानापुर में एक शराब कारोबारी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर दानापुर के राम बढ़ाई शाह की दुकान के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां दो तीन व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल ने खदेड़ कर सभी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में राम बढ़ाई शाह पिता बाढ़ू शाह साकिन दानापुर थाना माझागढ़ को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 59 छोटी पुड़िया में लिपटी हुई गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया है। गिरफ्तार आरोपी पर अब NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह उक्त मादक पदार्थ जादोपुर के छोटू महतो से खरीद कर लाता है और अपनी दुकान में बिक्री करता है। इसके अन्य साथियों की भी अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम CBSE सत्र 2025-29 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा 6 अक्टूबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए विषयों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा है। ग्रुप ए के विषयों की परीक्षा पहली पाली में और ग्रुप बी के विषयों की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। विद्यार्थियों को 18 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। परीक्षा के बाद 13 से 16 अक्टूबर तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद जिले के संबंधित कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ग्रुप ए में जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संस्कृत और कॉमर्स को रखा है। इन विषयों के अलावा दूसरी पाली में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, उर्दू, AIH&C, संगीत एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र विषयों को रखा गया है। विश्वविद्यालय में PG नामांकन की दूसरी मेधा सूची जारी होते ही छात्रों की परेशानी सामने आ गई है। सूची में नाम आने के बाद विद्यार्थी नामांकन कराने कॉलेज पहुंचे तो कई छात्रों का डिटेल समर्थ पोर्टल पर अपडेट नहीं मिला। मेधा सूची में नाम होने के बावजूद भी पोर्टल पर जानकारी नहीं दिखने से छात्र पूरे दिन कॉलेज और ऑनलाइन पोर्टल के बीच चक्कर लगाते रहे। ऑनलाइन की तारीख शुरू हो चुकी है, लेकिन पोर्टल की स्थिति ने विद्यार्थियों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने PG CBSE प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-28 की दूसरी मेधा सूची जारी की है। इसके आधार पर 12 तारीख से 16 सितंबर तक नामांकन होना है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में कागजातों का सत्यापन कराने के साथ ही नामांकन शुल्क जमा भी करना है, लेकिन पोर्टल पर डिटेल नहीं आने से कुछ छात्र परेशान है। कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 186 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 101 किसान भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री ने किसानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को पिछले रबी मौसम में रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बधाई दी। उन्होंने आगामी रबी मौसम की बेहतर तैयारी के लिए भी स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रबी योजना किसानों की जरूरतों के आधार पर गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर तैयार होकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचनी चाहिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नहाए खाए के साथ तीज का त्योहार शुरू। डेंगू के बढ़ते खतरे से लोगों में हुई परेशानी। आंगनवाड़ी पर गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यूरिया के कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। शराब और धोखाधड़ी के मामले में अलग अलग जगहों से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945651 या 97 0 97 0 6 575।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, आपका प्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला में तमाम सुनने वाले रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को हम सब परिवार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि प्रत्येक सप्ताह रविवार के शाम को 7:45 में और अगले दिन अर्थात सोमवार को सुबह 7:10 पर इस कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं और पंच परमेश्वर का इस कार्यक्रम में सहयोग मिलता है। रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित सोमवार से रविवार तक जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आप लोगों का सुझाव और विचार जो है हमें सुदृढ़ बनाता है। रेडियो रिमझिम जनता की बातों को, जनता के विचारों को अपनाता है और उसी के अनुरूप प्रसारित करता है। अपने स्थापना काल से ही रेडियो रिमझिम आम जनों से जुड़ा रहा। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने विचारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाती हैं और उससे रेडियो रिमझिम के कई कार्यक्रमों में, कई तकनीकी क्षेत्रों में हमने बदलाव किया। जहां पंच परमेश्वर का आशीर्वाद, सहयोग, सुझाव हमें सुदृढ़ करता है और कार्यक्रमों को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। रेडियो रिमझिम पिछले सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम जो है हमारे आरजे का तबीयत खराब हो जाने से बाधित रहा। कोशिश है कि आने वाले सप्ताह में जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम हैं सब पूर्व की तरह प्रसारित होना शुरू हो जाएंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं रेडियो रिमझिम से, विशेष करके युवा वर्ग, उन्हें बताते चलें, आप रेडियो रिमझिम को 4 माध्यम से सुन सकते हैं। पहला रेडियो के माध्यम से, दूसरा गूगल के प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके माध्यम से सुन सकते हैं, तीसरा इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं और चौथा आप अपने वाहन पर भी रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। यानी तकनीकी विभाग द्वारा हमें बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया कि रेडियो रिमझिम की आवाज जो है 4 माध्यमों से देश विदेश प्रदेश में पहुंचता है। आपको पता ही है कि सुबह 5 से रात को 11:10 तक रेडियो रिमझिम के विविध कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, व्यापारियों के लिए या सरकार द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, राज्य हो या केंद्र हो, उसकी भी जानकारी किसी न किसी माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाते रहते हैं। रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, रेडियो जानकारी का एक अनुपम उपहार है। जब अपने जिले के चार ब्लॉक में बाढ़ आता है, कोई भी विपदा आती है, तो रेडियो रिमझिम उसके लिए सभी तरह की सूचना प्रेषित करता है, भेजता है, प्रसारित करता है। इसकी जानकारी मौसम विभाग से, जिला प्रशासन के आपदा विभाग से लेकर त्वरित गति से हम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है उसकी भी सूचना देते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन कौन कौन सी बैठकें की गई, आम जनता के भलाई के लिए कौन सा निर्णय लिया गया, इन सब की सूचना हालचाल के माध्यम से हम देते रहते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास सूचना का अपार भंडार हो, वह व्यक्ति कभी निर्धन और गरीब नहीं हो सकता है। हम अपने अधिकारों को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है, गलती होता है, उसका नंबर भी हम रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित करते हैं। साइबर फ्रॉड होता है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। जो भी जानकारी हमें सही स्रोत से प्राप्त होता है, उसे आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम हमें आपसे जुड़ने का सप्ताह में एक दिन अवसर देता है, और इस अवसर पर हम लोग विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे अच्छी बात है, जो रेडियो रिमझिम को सुनता है, देश विदेश प्रदेश कहीं से भी अपने विचारों को, अपने सुझावों को रेडियो रिमझिम तक लिख सकता है, पहुंचा सकता है। और आज जो है कई ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जो श्रोताओं के बातों को मानते हुए रेडियो रिमझिम में अपने कार्यक्रम में अपने तकनीकी शैली में बदलाव किया है। रेडियो रिमझिम बिहार का एकमात्र ऐसा रेडियो स्टेशन है जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला है। जिला स्तर या प्रांतीय स्तर पर भी हमेशा पीठ थपथपाया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। मेरा मानना है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वह हमारे लिए सर्वोच्च है, और उसके आदेश का अनुपालन करना, मानना हमारा नैतिक धर्म भी है, कर्तव्य भी है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का बहुत सारा संदेश अगस्त 2026 में हमारे पास पहुंचा, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि अपने पारिवारिक कामों से मैं लगातार 20-21 दिन रेडियो रिमझिम के कार्यों से अलग था, इसलिए बहुत सारा संदेश सोनू जी लेकर बैठे हैं। पिछले सप्ताह हमने कुछ संदेशों का उत्तर दिया, और इस सप्ताह जो है जो बचे हुए संदेश हैं और नए संदेश भी आ रहे हैं, उनका उत्तर देंगे। हमने जीवन में कई बार महसूस किया भ्रमण करते समय कि आज जो है, आज की जो पीढ़ी है पहले के पीढ़ी से अलग है, आज का जो जनरेशन है पहले के जनरेशन से अलग है। यदि आज से 50 साल पहले का जनरेशन देखा जाए, तो कोई भी काम करने के पहले समाज परिवार का एक भय बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार जो है टूटते जा रहा है, हम हमारी पत्नी और बच्चे तक सीमित होते जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह विदेशों में हमने सुना है, यूरोप कंट्री में, कि जहां बच्चा 18 साल का हुआ तो माई बाप से वह अलग अपना परिवार या जीवन यापन का कार्य शुरू कर दिया, और माँ बाप जो है वृद्धा आश्रम चले गए, वही प्रवृत्ति जो है आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। भारत के कई राज्यों में समय समय पर हमें भी भ्रमण करने का अवसर मिलता है कि हम जो है नज़दीक से शहरी जीवन का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण परिवेश से निकले हैं और गांव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह जो बदलाव है केवल शहर तक सीमित नहीं है, यह बदलाव जो है छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुका है। लोग जो है अंतर्मुखी न होकर आत्ममुखी होते जा रहे हैं और यह जो है सामाजिक स्तर पर एक गिरावट के तरह देखा जाएगा। पहले कोई भी काम करने से पहले हम जो है हजार बार सोचते थे, लेकिन आज का जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें हमको कितना फायदा है इस बात पर ज़्यादा जोर देता है। इसे समय का बदलाव कहा जाए या वैज्ञानिक उन्नति कहा जाए या जनरेशन गैपिंग कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन यह एक बदलाव होता है। हम ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिसे 6 दशक देखने का अवसर मिला। हम अपने बाप दादा को देखे, हम जो है अपने हम उम्र के लोगों के साथ रहे और आज जो है नई पीढ़ी को देख रहे हैं। इसमें जो है भारी बदलाव हो रहा है। पहले शिक्षा में नैतिक बल पर, मोरलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। आज जो है बच्चे को ATM बनाने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं कि कौन सा पढ़ाई पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करे। और पहले जो है यह देखा जाता था कि शिक्षा के माध्यम से यह बच्चा जो है कितना विनम्र, सुशील और नैतिकवान बनता है। और कहा भी गया है कि जिस शिक्षा में नैतिकता नहीं हो, मोरलिटी नहीं हो, वह केवल धन अर्जित करने का एक संसाधन बन जाता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आज भी जिस समाज में अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह घर जो है खुशहाल होता है, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का परित्याग होता है, तिरस्कार होता है, वह घर परिवार जो है धीरे धीरे बिखरने लगता है। मेरा मानना है कि जो घर परिवार के बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है। जैसे कहा जाता है कि भारत वर्ष के कर्नाटक राज्य में कोलार में सोने का खजाना है और वहाँ जो है निकाला जाता है, ठीक उसी तरह जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जीवन का अनुभव जो भी व्यक्ति अपनाता है, उसका जीवन सरल और सरस हो जाता है। हमने यह जीवन में अनुभव किया है। चूंकि बातें मेरे पास बहुत है, जो जीवन का अनुभव है उसे मैं साझा नियमित और लगातार करता रहूंगा, और चूंकि घड़ी का इशारा है कि आपका बहुत सारा संदेश है, उसका भी प्रत्युत्तर हमें देना है, तो मेरे साथ सोनू जी बैठे हैं और वह प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुँचा हुआ है राम अयोध्या साहजी का कुचायकोट से। नमस्कार पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को, मैं हालचाल और प्रादेशिक समाचार तथा राष्ट्रीय समाचार ऐप से सुनते हैं। निर्गुण का समय निश्चित किया जाए और उसे कम से कम 30 मिनट समय दिया जाए। पिछले 2 सप्ताह से बिरहा अच्छा नहीं चला, बाकी रेडियो रिमझिम शानदार तरीके से चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय शाह जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते हैं, और जो मुख्य चीज है हालचाल और प्रादेशिक समाचार, जिसे आप नियमित सुनते हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। और जो रेडियो रिमझिम को सुनता है वही अपने बातों को सही और सटीक ढंग से आपका संदेश मिला में पहुंचाता है। हमारे सुनने वालों की संख्या लाखों लाख है, लेकिन संदेश जो है सैकड़ों की संख्या में आते हैं। यह दर्शाता है कि जो लोग दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, रेडियो रिमझिम के प्रति समर्पित हैं, उन सभी श्रोताओं को हम सदैव नमन करते हैं। और हमारे कई ऐसे शानदार श्रोता हैं जो संदेश तो नहीं भेजते हैं, लेकिन रेडियो रिमझिम के कार्यालय में फोन करके शनिवार और रविवार को पता करते हैं कि हम उपलब्ध हैं कि नहीं। यह बात दर्शाता है कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम सुनने के लिए वह जो है बहुत ही आतुर रहते हैं। उन सभी सदस्यों को हम अपनी पूरी टीम के तरफ से सदैव नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय शाह जी, आपने कहा कि निर्गुण का समय बढ़ाया जाए। वैसे भी प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 30 मिनट निर्गुण प्रसारण होता है और 30 मिनट भोजपुरी गीतों का प्रसारण हम लोग करते हैं। यह हमारा शेड्यूल है, कार्यक्रम है। हो सकता है कभी ऑपरेटर 5 मिनट कम लगा दिए हों या 5 मिनट अधिक लगा दिए हों, तो निर्गुण जो है नियमित और सही समय पर चलता है। बिरहा के बारे में कहा जाता है तो यह बिरहा जो है पूर्व में भी चला था। आपका जब संदेश आया तो हमारे जो कार्यक्रम अधिशासी पदाधिकारी हैं या जो देख रेख करते हैं उन्होंने चेक किया तो वह निर्गुण पहले भी चला था और इस बार भी चला है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि रेडियो रिमझिम जब कोई विशेष कार्यक्रम चलाता है तो उसको कई चरणों में देखा जाता है कि यह कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के हित में है कि नहीं, तब उस कार्यक्रम को हम प्रसारित करते हैं। तो निर्गुण को और बिरहा को चेक किया गया तो वह सही समय पर और सही दिशा में चल रहा था। तीसरी बात, आपने कहा हालचाल के बारे में, तो आपके साथ जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं तो रेडियो पर रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे नियमित हालचाल चलता है, लेकिन रात को 12 बजे से पहले हमारा प्रयास होता है कि हालचाल को रेडियो रिमझिम के नाम से जो YouTube बना है उस पर भी हम लोग डाल देते हैं और उस पर भी लोग बड़े मजे से और चाव से केवल ऑडियो सुनते हैं। और इसलिए हम लोग ऑडियो डालते हैं केवल आवाज, क्योंकि जब हम फोटो के साथ आवाज को सुनेंगे तो 1.5 GB, 2 GB का इंटरनेट या नेट जो मोबाइल को मिलता है एगो हालचाल सुनने में ही आधा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑडियो डाला जाता है कि नेट भी बचा रहे और सारी सूचनाएं भी मिल जाए। तो हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को के हित को ऊपर रखते हैं और अपने हित को नीचे रखते हैं। यही कारण है कि रेडियो रिमझिम 2008 से 2026 हो गया। जो श्रोताओं की संख्या थी वह लगातार बढ़ता रहा, नए लोग जुड़ते रहे, पुराने लोग अपनी बातों को हम तक पहुंचाते रहे। और यह जो कार्यक्रम है आपका संदेश मिला, यह आम जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसमें आप अपने व्यक्तिगत बातें रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों के बारे में भी हम तक पहुंचाते हैं। और इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे श्रोताओं को यह होता है कि जहाँ हमारी कमियाँ रह जाती है, कार्यक्रमों में जहाँ हमें सुधार करना होता है तुरंत करते हैं, त्वरित गति से करते हैं। यानी प्रसारणकर्ता और श्रोताओं के बीच का यह कार्यक्रम एक संगम है जिसके वजह से रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम बेहतर होते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार बैठा जी का, पोखरभिंडा सिवान से। नमस्कार सर, रेडियो रिमझिम का सभी कार्यक्रम चल रहा है लेकिन दिन में ऑनलाइन कार्यक्रम क्यों नहीं चल रहा है, कृपया बताया जाए। बाकी कार्यक्रम बेहतर है, समय से रेडियो रिमझिम का संचालन हो रहा है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय अमित कुमार जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका प्यार भरा संदेश हमें मिला, इसके लिए हम आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे जिले वासियों को धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम न चलने का कारण कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बताया है कि जो हमारी आरजे थी वह अस्वस्थ हो गई थी, जिसके कारण हमने ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर पाया और आने वाले सप्ताह में हम शुरू कर देंगे। लेकिन रेडियो रिमझिम का सीमित संसाधन है, सीमित मानव बल है, जिसके बदौलत हम अपने कार्यक्रमों को प्रदेश, देश और विदेश तक पहुंचाते हैं। कभी कभी किसी का अस्वस्थता के कारण, मानव बल की कमी के कारण कोई कोई कार्यक्रम हम बाधित हो जाता है। जितना कष्ट आपको होता है उतना ही एक प्रसारणकर्ता होने के नाते हमें भी होता है। लोग बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, स्वस्थ मनोरंजन करते हैं, बड़ा ही आनंदमय कार्यक्रम ऑनलाइन होता है। रात में हो, दिन में हो, सभी लोग खुलकर अपने बातों को रखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ऑनलाइन होता है, छोटी छोटी बातें भी हमारे आदरणीय श्रोता आरजे तक पहुंचाते हैं। हमारे जो आरजे हैं, जो रेडियो पर बोलते हैं, वह अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। और जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तब कार्यक्रम और बेहतर हो जाता है। तो हमारे परिस्थिति को देखते हुए आप सकारात्मक सहयोग जो लंबे समय से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। गाना चलते टाइम ही बहुत प्रचार आ जाता है, यह सबसे बड़ी गलत बात है। गाना प्ले हो रहा है, इस बीच में प्रचार आ जाता है, इस तरह गाने का कोई मजा ही नहीं रहता। इस संदेश को भेजे हुए हैं विजय शाह जी, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय विजय शाह जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह जब संदेश आपका मिला, उसी समय जो हमारी टेक्निकल टीम है वह जो है जांच फरक शुरू कर दी थी। आपकी बात जो है 100% सही था। हमें अभी भी याद है, रात को 11 और 1 बजे के बीच में हमारी टेक्निकल टीम ने जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुआ था, जहां से हम प्रसारित करते हैं, उसको जो है वे लोग ठीक ठाक किए। यह बात हमारे टीम को समझ में नहीं आ रहा था शुरुआती दौर में। जब हम लोग सुनते थे तो लगता था कि श्रोता अधिक हैं, इसलिए गाना को थोड़ा काट दिया गया है। जब लगातार इस तरह की बातें होने लगी, तो अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि अब हम लोग देखें, तभी आपका जो है यह संदेश मिला, तो हमारी शंका जो है पुष्ट हो गई कि एकदम सही बात है। और 11 बजे रात से 1 बजे रात तक हमारी टेक्निकल टीम जो है इस पर लगी, सॉफ्टवेयर को जहां गड़बड़ियां थी ठीक की और हमें रिपोर्ट अगले दिन किया गया। तो हम इसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के प्रति अपने हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हैं कि जब भी कोई रेडियो रिमझिम के प्रसारण में गड़बड़ी हो, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर सूचित करें। कई हमारे नए श्रोता हैं, कहते हैं कि हमें नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर जब आप जाइएगा तो रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रमों का नंबर, कार्यालय का नंबर, एक पोस्टर बनाकर लिख दिया गया है, आप वहां से नोट करें और हमको सूचित करें। कई श्रोता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो फेसबुक चलाते नहीं हैं, तो हमको नंबर कहाँ से मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, जो भी हमारे आरजे ऑनलाइन कार्यक्रम में बैठते हैं उस कार्यक्रम का नंबर हर 15 मिनट के बाद या 30 मिनट के अंदर एक बार जरूर नए श्रोताओं के लिए बताते हैं कि हमारा नंबर यह है, तो आप उस पर भी हमें सूचित कर सकते हैं। आपका सकारात्मक सहयोग जो है रेडियो रिमझिम को सही दिशा में ले जाने का एक छोटा सा सहयोग है। इसके लिए एक बार पुनः हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है शैलेश पांडे जी का। पूरे रेडियो रिमझिम को नमस्कार है। अपने जिले का और पूरे बिहार का लोकप्रिय चैनल रेडियो रिमझिम है। आपने संदेश मिला में बताया कि 26% सर्वे में रेडियो रिमझिम का रिजल्ट आया है, यह जानकर बहुत खुशी हुआ। इसी तरह रेडियो रिमझिम लोगों का सेवा करते रहे। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दे।
1: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे आदरणीय श्रोता, आपका संदेश मिला कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इस संदेश के माध्यम से हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, हमने बताया था कि 3 महीने

0: यह हुआ कि हमारी गोपालगंज की जनसंख्या 2011 में यदि 25 लाख है या 28 लाख है, हम जो है बता रहे हैं एक अनुमान के तहत, और 2026 तक कितनी हुई है 2011 के सेंसस से बता रहे हैं, 2026 में कितनी हुई है अंदाज कर रहे हैं कि 35 लाख के करीब हुई होगी या 30 लाख, तो उसका जो है 26% काफी होता है। और हमें लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या जहां सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय होना अपने आप में बड़ी बात है। तो जिन लोगों ने सर्वेकर्ता के साथ सहयोग किया, उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। आदरणीय पांडे जी, रेडियो रिमझिम का यह प्रयास होता है कि हम स्वस्थ मनोरंजन, सही जानकारी, हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं। एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने में कई चरणों से सरकारी विभाग के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर जो है स्वीकृति प्राप्त होती है। इसलिए बड़े ही सावधानी से एक निष्ठावान और भारतीय संविधान के अंतर्गत रहते हुए अपने कार्यक्रमों का हम प्रसारण करते हैं। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन हमें दिया गया है, उसी परिधि में रहकर बेहतर काम करने का प्रयास किया जाता है। और उस स्थिति में यदि इतनी बड़ी जनसंख्या रेडियो रिमझिम को सुनती है, यह जो है अपने आप में उपलब्धि है। इसके लिए हम तमाम श्रोताओं के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का इसी तरह का सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम परिवार को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है भगवानपुर पंचदेवरी से रोशन सिंह जी का। रेडियो रिमझिम को हमारे क्षेत्र में ऐप के माध्यम से सुना जाता है, कार्यक्रम अच्छा है, विज्ञापन संबंधित और भारतीय संस्कृति की कहानियां भी सुनाई जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे प्रखंड वासियों को, ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूर दराज क्षेत्र में रहते हुए यदि आप रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम को सुनते हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि आपका संदेश मिला, कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं, यह एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। इसके लिए हम हृदय के गहराइयों से आपके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे कई कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे भारत की कहानियाँ, बिरहा के माध्यम से कहानियाँ, सोठी बिरजाभार की कहानियाँ, विक्रम बैताल की कहानियाँ, जो हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पूर्वजों की वीरता की कहानी सुनाता है, और हम लोगों के अंदर एक अदृश्य शक्ति और नैतिकता भरता है, और स्वस्थ मनोरंजन के साथ हमें बेहतर कार्य करने का प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया है कि हमारे समाज में 99% से ज्यादा लोग अच्छे, सच्चे और बेहतर हैं, लेकिन केवल 1% के कारण हम लोग अपने घरों में, गाड़ी में, मकान में ताला लगाते हैं। 99% से ज्यादा लोग अच्छे हैं, और उस समाज में हम लोग रहते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति बाइक से, साइकिल से, टकराता है, गिरता है, तो वहाँ के अगल बगल के लोग अपना सारा काम छोड़कर उस व्यक्ति को उठाने बैठाने अस्पताल भेजने का काम करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की प्रचुरता है, संख्या अधिक है। जहाँ आज के जमाने में बाप बेटा में नहीं पट रहा है, पुत्र और माता में कह

0: कहीं कहीं वैचारिक मतभेद हो जा रहा है, वहाँ समाज में सहयोग करने वाले लोगों की संख्या आज भी काफी है। हो सकता है नैतिक बल की कहीं कमी हो, लेकिन आज भी लोग बेहतर हैं। कई जगह देखा जाता है कि सकारात्मक लोगों की संख्या अधिक है, नकारात्मक लोगों की संख्या कम है। गांव में देखिए तो 90% से 95% से ज्यादा लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। बस 2-4% जो है न खाएंगे और न खाने देंगे के नीति पर चलते हैं। तो यह समाज है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सबको साथ लेना होना चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर में 5 गो उंगली है, 5 गो डिजाइन में वह दिखता है, लेकिन यह 5ों जब मिल जाता है तो एक मुक्का के तरह काम करता है। उसी तरह समाज में सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग से समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और संसार में हमारी छवि एक मजबूत देश के नागरिक के रूप में होती है। कहा जाता है कि पहले भारतीय पासपोर्ट को बड़ा कम ध्यान दिया जाता था, जो समाचार पत्रों में हमने भी पढ़ा है। आज जो है बड़े मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। जैसे जैसे आर्थिक रूप से देश या परिवार मजबूत होता है, वैसे वैसे दूसरे के नजर में वह बेहतर होते जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है, नाजिर हुसैन माझागढ़ से भेजे हैं। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को सलाम। ऑनलाइन कार्यक्रम दिन में शुरू किया जाए, स्वच्छता की कहानी आपने रेडियो रिमझिम के माध्यमों से सुनाया, यह काफी अच्छा था, इसे फिर से एक बार रिपीट किया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: जनाब नाजिर हुसैन साहब को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन है, प्रणाम है। आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को भी नमन और प्रणाम है। स्वच्छता व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ही जरूरी है, मेरा भी मानना है। स्वच्छता जो है व्यक्ति को बड़ बीमारी से जो है अलग रखेगा। साफ सफाई, घर, बिछावना, शरीर कुछ भी हो, यदि हम थोड़ा सा समय दे देते हैं तो यह जो है हमारे लिए बेहतर होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से स्वच्छता पर बल दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इज्जत घर बनाया जा रहा है। जो शौचालय होता था उसका नाम जो है इज्जत घर हो गया है। वह जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चल रहा है। गांव-गांव में भी डस्टबिन अब रखा जा रहा है, शहर में तो पहले से था, लेकिन गांव में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए स्वच्छता कर्मचारी भी रखे गए हैं प्रत्येक वार्ड में, जहाँ तक हमें जानकारी है। भारत सरकार के आदेश से हमने इस कार्यक्रम को बनाया और चलाया और आने वाले 17 सितंबर को सुबह 7:30 पर इसका 3रा एपिसोड हम प्रसारित करने जा रहे हैं। 3 एपिसोड हमने स्वच्छता पर बनाया है। कई प्रखंडों में हम गए, लोगों से बातचीत किए, जो स्वच्छता कर्मी है उनसे भी बात किए, महिला हो पुरुष हो, सब लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। मेरा मानना है कि सरकार कोई भी कानून बनाए या कोई भी नियम बनाए तो हमें भी उसमें योगदान देना है, अपना सहभागिता करना है। यदि हम सब लोग छोटा छोटा प्रयास करें तो हम लोग का जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। हम जो 20-21 दिन नहीं थे, इसी बीच दिल्ली जाने का हमें अवसर मिला, तो हम जिस ट्रेन में जा रहे थे तो देखे कि लोग जो है चाय पी के कप को स्लीपर में थे तो कप को जो है उठा के ट्रेन में जहाँ शौचालय बना है उसके बगल में डस्टबिन जो है बना हुआ था, लोग जो है अपने सीट पर से जाकर उस कागज के कप को उस डस्टबिन में डाल रहे थे। यह जो है मेरे नज़र में बहुत बड़ा बदलाव है। आज भी कई लोग जो है मूंगफली ट्रेनों में खाते हैं तो जिस पॉलिथीन में या बर्तन में खा रहे हैं हमने देखा कि उसका जो खोइया है उसको जो है उसी पॉलिथीन में रखे हैं और खाने के बाद ले जाकर उस डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो यह जो है एक क्रांतिकारी बदलाव है और हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बचपन में शिक्षक माता पिता स्वच्छता पर विशेष बल देते थे कि बिना नहैले खाना ना मिली। विद्यालय में चेक होता था कि नाखून आपका बढ़ा है कि नहीं, आप नहाए हैं कि नहीं, यह जो है विद्यालय में भी होता था। आज के दौर में क्या होता है यह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह सब चेक होता था। तो स्वच्छता हमारी सभ्यता संस्कृति का एक अंग है और उसे हमें अपनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रेडियो रिमझिम ने इस कार्यक्रम को बनाया। आपको नाजिर हुसैन साहब अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सब कार्यक्रमों का सुनने के बाद दूसरों को भी बताएं। इस तरह के रचनात्मक सहयोग से स्वच्छता जागरूकता बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है व्यास राम जी का। सर नमस्कार, आपका संदेश मिला कार्यक्रम और SMS फरमाइश हमें काफी अच्छा लगता है। रात को समय मिलता है तो सुनते हैं। शिक्षा के साथ और क्या करना चाहिए कि व्यक्ति शून्य से शिखर तक जाए। भाईचारा और लड़कियों पर जो संदेश देते हैं वह बहुत अच्छा लगता है। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय व्यास जी, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप लोग जैसे श्रोताओं के प्रति हम विशेष स्नेह रखते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों पर भी चर्चा करते हैं, अपनी भी बातें उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा लगता है, पारिवारिक मिलन भी हो जाता है। रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोता हैं मेरे समझ से एक परिवार के सदस्य के तरह हैं। हमने कई बार देखा है कि रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस हो, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हो या अन्य कोई फंक्शन हो, जब भी हम सूचना देते हैं सैकड़ों के संख्या में हमारे आदरणीय श्रोता अपना मूल्यवान समय देते हैं। इसके प्रति तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आदर और स्नेह व्यक्त करते हैं। आपने प्रश्न रखा शिक्षा के साथ व्यक्ति आगे कैसे बढ़े। हमने बचपन से सुना है और महसूस किया है कि जिस परिवार में शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ रहन सहन खान पान बोल चाल सब कुछ बदल जाता है। शिक्षा जो है एक आकार है जो व्यक्ति के जीवन में हर तरह के सुख सुविधा प्रदान कर देता है। मानव जीवन जो है धन्य हो जाता है। शिक्षा का मतलब जो है विनम्रता नम्रता और दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखने का एक छोटा सा प्रयास है। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है नम्रता है वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप पहुँच जाती है। सरस्वती और लक्ष्मी का जब संयोग होता है वह व्यक्ति शून्य से शिखर के तरफ चला जाता है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन में, अपने परिवार में उन्नति के शिखर पर लेकर चला जाएगा और उसके साथ सही दिशा में परिश्रम भी होना चाहिए। जैसे हमको एक गाछ काटना है तो नाखून कटनी से हम गाछ को नहीं काटेंगे, उसके लिए आरी है, टांगी है। तो हम सही काम को सही दिशा में सही यंत्र के माध्यम से करेंगे तभी हम शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। और जीवन में थोड़ा सहना रहना यह अच्छी बात है। हम जहाँ भी रहते हैं भाईचारा और प्रेम से रहें, इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं है। वही समाज परिवार विकास करता है जहाँ शांति व्यवस्था बनी रहती है। गाँव में जब हम लोग थे तो लोग कहते थे कि जिसके घर केस मुकदमा नहीं होता है, डॉक्टर के पास आना जाना कम होता है, वह परिवार जो है उन्नति के तरफ बढ़ते जाता है। अर्थात हमें अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और लड़कियों की शिक्षा तो अति महत्वपूर्ण है। जो हमारे देश के दार्शनिक हैं उन्होंने कहा है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो वह कमाकर अपने परिवार को चलाता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार जो है शिक्षित हो जाता है। यह बात आज भी उतना ही सत्य है जितना पूर्व में था। तो हमें जो है बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। और वह शिक्षा यह जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो वह बहुत बेहतर बनेंगे। हम लोग के जमाने में उस समय निजी विद्यालय बहुत कम हुआ करता था और जो बहुत धनवान और पूंजीवान होते थे वही जो है उस निजी विद्यालय में जाते थे और मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग जो है सरकारी स्कूले से पढ़कर निकले हैं। तो हम पढ़ाई कहीं भी करें, हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हम सफल हो जाएंगे। और सफलता के लिए मेरे समझ से एकमात्र रास्ता है कि शिक्षित होना चाहिए, नम्र होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए और दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। आप जो है शून्य से शिखर के तरफ चले जाएंगे। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मन में बहुत बातें रहती है लेकिन समय जो है अपना इशारा करने लगता है कि अब आपको इस कार्यक्रम से निकलना होगा। तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पूरे समाज में शांति व्यवस्था के लिए अपना योगदान देते रहिए। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जाने की इजाज़त लेते हैं। आज का दिन आपका मंगलमय हो इसी कामना के साथ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-86100।
8: प्रणाम उन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
9: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
8: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
10: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
8: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
10: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
8: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
11: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
12: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
11: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
13: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
8: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
14: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
8: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
15: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
8: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
16: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
8: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
17: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कैनेडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
8: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
19: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
18: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA-ruled states before 2029.
20: We introduced the Uniform Civil Code in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2019. The Bharatiya Nyaya Sanhita, which has been created, has served to give an Indian foundation to the criminal justice system.
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
21: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
22: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
21: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
22: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
21: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो

0: पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
0: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
1: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और

0: सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: म्यूजिक

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणाम उन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें वर्ष 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा रही है हर संभव सहायता। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन भाषण का एक अंश दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: 12 और 13 सितंबर 2026 को भारत की मेजबानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 सहयोगी देशों के नेताओं सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की 75% हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी नियमित रूप से कॉलेज आएंगे और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे, तभी इन संस्थानों की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के युवाओं के भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाना शिक्षकों की जिम्मेवारी है।
3: आज वो व्यवस्था बदलने का समय आया है। गुरुकुल की व्यवस्था तो अब नहीं है, लेकिन हम ये जरूर प्रयास करें कि हमारे बीच में हमारे बच्चे पढ़ने जरूर आए। आप पूरी तरह इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ 75% बच्चे कैसे हर हालत में अटेंडेंस आपके कॉलेज में बनाने का काम करें और आप पढ़ा सकें।
0: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने लोगों से पंचायत स्तर की योजनाओं की लगातार निगरानी करने की अपील की है। बांका में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम ग्रामीणों की निगरानी रहने से पंचायत और बेहतर ढंग से काम करेंगी।
4: पंचायती राज विभाग में अगर कहीं स्पेसिफिक अगर आपको कहीं समस्या दिख रही है तो संज्ञान में लाइएगा, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। जो भी योजनाएं परियोजनाएं चलती हैं पंचायती राज विभाग के माध्यम से, उसके लिए क्लियर निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी समस्या दिखे, समस्या पे तुरंत एक्शन लेना है। पदाधिकारियों को बोला गया फील्ड में भी जाएं और आमजनों से भी मेरी अपील रहेगी, कहीं भी अगर समस्या दिखती है, अगर आम लोग खुद भी अगर सही तरीके से निगरानी करने लगे, खासकर पंचायत में चलने वाली योजना का, तो बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर योजना चलती है, लोगों के घर के बगल में योजना चल रही है, लोग अगर खुद अगर उसका निरीक्षण करेंगे तो कहीं कमी पाई जाएगी तो फिर वो सवाल पूछ सकते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, पदाधिकारियों से, पंचायती राज विभाग के कर्मियों से।
0: जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक 18 सितंबर को पटना में होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बैठक में विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी दी जाएगी, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और कार्यस्थगन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश में हिंदी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राज्य के 15 जिलों में 48 लाख से अधिक की आबादी अब भी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित आबादी तक भोजन, राहत सामग्री और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 88,54,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। 13 राहत शिविरों में 12,260 लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बाढ़ की आपदा के समय में राज्य सरकार गंभीरता से राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। श्री कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने में केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है।
1: केंद्र का भी पूरा ध्यान अपने बिहार पर है, बाढ़ पीड़ितों पर है, लोगों पर है, उनकी सहायता के लिए है। तो हर प्रकार से राज्य की सरकार इस काम को कर रही है और इस आपदा की घड़ी में चट्टान की तरह बिहार की सरकार यहाँ की जनता के साथ खड़ी है। और इस काम को खुद बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को राज्य में लगाए हुए हैं।
0: प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर घट रहा है। गंगा और पुनपुन नदी का जलस्तर घटते ही पटना जिले के बाढ़ प्रभावित मोकामा, बख्तियारपुर और दियारा इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक, बेनीबाद में बागमती तथा दरौली और गंगपुर सिसवन में घाघरा नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। इधर वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक का जलस्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, जबकि इंद्रपुरी बराज पर सोन नदी का जलस्तर घट रहा है। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियों में कमी आई है। इसके कारण विभिन्न स्थानों पर मौसम शुष्क है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है।
2: दिनांक 14 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। हरतालिका तीज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास और पूजा अर्चना करती हैं। सहरसा में बच्चों के भोजन में कथित तौर पर छिपकली मिलने के मामले में शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसदेवा के प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन करने के बाद लगभग 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड में फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुरा पश्चिम गांव में मिट्टी धंसने से 5 में खेल रहे 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय उच्च पथ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा कोचस मुख्य मार्ग पर अखौरीपुर गोला के पास एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। सिवान के महाराजगंज में आयोजित मौनिया बाबा राजकीय महोत्सव में प्रसिद्ध लोक गायिका देवी और लोक गायक आलोक चौबे ने अपनी प्रस्तुति दी। हैदराबाद में आयोजित प्रथम कैडेट राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में कटिहार के पीयूष कुमार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीवन सिंह और अन्य लोगों ने इस उपलब्धि पर पीयूष को बधाई दी है। सिवान की रहने वाली पिंकी कुमारी को बिहार जूनियर बालिका फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। पिंकी के नेतृत्व में राज्य की टीम आंध्र प्रदेश के आनंदपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा, खनिजों को हथियार न बनाएं। दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब बीजिंग में मिलेंगे। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार में सौर ऊर्जा से जुड़ेंगी सिंचाई, आशा मॉडल सिंचाई, अब डीजल और महंगी बिजली से राहत मिलेगी। प्रभात खबर ने खेल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सीनियर महिला क्रिकेट से जूनियर पुरुष और महिला हॉकी तक भारत ने जीते 3 एशिया कप खिताब। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें वर्ष 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा रही है हर संभव सहायता। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up.
13: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
14: हेलो
15: जी, नमस्ते।
14: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। धूप तो निकला हुआ है, अभी धूप का छाऊं।
15: बोले की रोटी जा गाना है, भोजपुरी है मैम।
14: जी
15: बढ़िया गाना है, बढ़िया ही गाना है, खराब खराब नहीं है
14: जी। हाँ, ये गाना जो
15: आप बजा के ठीक कीजिए तो फरमाइश कीजिए।
14: नहीं नहीं, गाना सुने हैं, गाना तो बहुत अच्छा
15: है जी। पवन राहुल
14: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
15: जी जी, नमस्ते।
14: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM
15: जी।

0: हेलो
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में। बता दीजिए। हेलो हाँ जी, गाना बता दीजिए।
0: ये मेहंदी का बूटे रंग अनोखे नहीं है गाना, तो हमको तुमसे प्यार है उसी में क्या है कि क्या पता का गाना फिल्म में क्या है।
1: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे, यही वाला
0: जी मैम।
1: अच्छा जी, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
0: मैम सुनीता देवी हो जयपुर से।
1: अच्छा जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना
0: जी? मैम ठीक है, आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत देर से कॉल की है।
0: पूजा करते करते करते करते समय हो गया। अब तो देखे कि सोचे का कि टाइम तो माने पूजा करके खाना खा रहे थे, तो अभी देखे कि अभी सोचे का कि ट्राई करे, अगर लग जाए तो बात हो जाएगा, नहीं तो ठीक है मैम।
1: और गाना जो बताई हूँ डेडिकेट भी करना चाहती हूँ
0: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सनी भैया को। और सनी मैम जो मैम है, सनी की क्या नाम है पहले थी?
1: सोनी।
0: हाँ सोनी, अब नहीं आएंगी मैम?
1: अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारा
0: ही था। ये तो बात है, उनका मन का बात तो ही न जाने, मगर बहुत अच्छा उनका आवाज था। आप लोग का भी आवाज बहुत अच्छा है, मगर बहुत माने अच्छे से बात करती थी। अब आप लोग भी बात अच्छे से करते हैं, लोग माने गुस्साइएगा नहीं,
1: मतलब हम कहा लग पाएंगे। बात आप सही बोल रही हैं।
0: ऐसा ही बात है, तो आप सब बोलिए, घर परिवार सब कोई ठीक है ना मैम?
1: जी सब कोई ठीक है।
0: चलिए मेरा भी ठीक है।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
0: मैम? ओ वाला तो दोनों गाना हम सुनते ही नहीं किए, गाना तो सुनते हैं छोटा वाला मोबाइल से, दिन भर सुनते हैं, 9 बजे रात को भी सुनते हैं, 9 बजे रात तक नहीं, 9:30 सोनू भैया आते हैं, क्या पता वो आते हैं कि रिकॉर्डिंग बजाया जाता है, मगर ये नहीं पता है कि मैंने उरा को बोलते हैं कि मैं मैसेज करने के लिए, तो मैंने मैसेज लू करते हैं तो गाना बजता है
1: जी। तो आप उसने फरमाइश की थी या फिर हेलो माय चॉइस की थी?
0: नहीं आपसे तो की थी।
1: तो आप सुनती हैं ना?
0: जी मैम सुनते हैं
1: जी।
0: हो सकता है मैम कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो चार्ज में लगा देते हैं, तो हो सकता है बजा दी होंगी
1: जी। मैं गाना सबका बजाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो गाना तो सबका बजेगा
0: जी मैम, मेरा नहीं ही गलती होगा।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनीता जी प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: नमस्कार मैडम जी।
9: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
10: मैं किशोर बोल रहा हूँ, परसों से बात हुआ था। हाँ जी, आपको सुनाया था हमारा मनपसंद गाना, कल बहुत अच्छा लगा था।
9: अच्छा जी, सुना अपना गाना?
10: हाँ जी सुने थे, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। एक चीज आए थे मैडम, प्रचार बहुत लंबा कर दिए आप लोग, थोड़ा कम करिए
9: जी,
10: प्रचार थोड़ा कम करिए, ज्यादा लंबा हो रहा है।
9: अच्छा,
10: उनसे आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप हेलो फरमाइश भी चालू करिए
9: जी। जी बहुत जल्द होगी चालू,
10: गाना सुना दीजिए। सुनाइएगा।
9: मैं गाना आपको सुनाऊंगी, बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
10: हम बोल रहे हैं राजस्थान।
9: और आपका नाम?
10: जय किशोर।
9: अच्छा जय किशोर, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
10: दीदी आशी का गाना सुना दीजिएगा, बलमुआ आजा जल्दी आजा।
9: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
10: कि आपको पहले सुनने वाले सब।
9: ओके जी, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: मुझे किस सुनना है
1: जी? सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
0: मेरा नाम उमा शंकर सिंह है।
1: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, तो क्या है आज की फरमाइश?
0: फरमाइश है ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो।
1: और ये डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: हाँ, आप सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, और रानी हरप्पा को भी डेडिकेट रहेगा। बाकी हमारे उत्तम सोनी है, दिलीप भाई हैं, कामरान भाई हैं, कामरान भाई सब सुनने जाए।
1: चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है, ओके।
2: ये पर

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमा जेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम तो बिल्कुल बढ़िया वानी, आपन बताएं। क्या होता
10: है,
9: क्या हुई रोग से बात होता
10: है? इंतजार करती है, बात कॉलिंग बना।
9: चलिए कार्यक्रम से बहुत लगाव हो गया
4: ना। जी मैडम जी, टाइम हो जाला तो सोचे नहीं पहले बतिया ली तब एक कमा कर दे।
9: चलिए ठीक है करी नहीं ऐसे नाम
4: बात कर बोलो से आदत हो गई है बाकी काम 10 मिनट बाद हुई था कि फोन पहले।
9: हाँ बिल्कुल चलिए
4: ऐसे भी आज थोड़ी बतिया नहीं हमको कम 2000 बात मैंने बोला रही है
9: ना ना वैसे बताई तो वाले से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके भी।
4: जब बात हो जा रहा से तो माने के चला बात बन गए फिर जितना लेट हो रहा था उसी घर में करने बात हुई थी।
9: अच्छा हाँ चलिए ठीक है वैसे नाम बता दिया अपन
4: रेशमा बोलते हैं पठान पट्टी से।
9: अच्छा तो घर पर
4: ला जाता नहीं ना
9: ना ना नहीं बुलाई तो अभी बताई घर परिवार में सब कुछ ठीक था।
4: हाँ मैडम सब कुछ ठीक है अपन कौन
9: जी सब ठीक है
4: दादा बोल सब कुछ ठीक है।
9: सब कुछ ठीक है
4: नाश्ता सबका कहीं नहीं।
9: हाँ नाश्ता बोलिए सही तो क्या बात है
4: आज की फरमाइश ये बा हिंदी गाना सुनने वाली ज्यादा तो याद नहीं है बता देते नहीं अब अपन आ जाते ही बजा दे हिंदी गाना नहीं क्या चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता।
9: कौन सा
4: चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता बाय गाना।
9: हाँ हाँ बा
4: तो उसे बजा दी ज्यादा हमारा कोई याद नहीं थे कम से याद रहला तो बता दे।
9: चलिए कोई बात नहीं कि ये बजा दे मगर ना मिले तो कौन और बजा सकते हैं।
4: हाँ ना मिल तो
9: आप सुनवाई के भी चाहते नहीं।
4: हाँ तो रौरा सुने मैम लोग बोले वाली तो साथी में सब कुछ जितना लोग सुनते सब कुछ सुन ले करे।
9: चलिए तो फिर प्ले करते हैं और गाना
4: जी मैडम जी बजा
9: जी सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत स्वागत करता है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: हमारा नाम है बद्रू नारायण मुनि।
1: और कहाँ से?
0: ग्राम भलुई से, जिला सिवान, जामो बाजार।
1: अच्छा, तो कैसन बनी हुआ?
0: ठीक बनी, जय भवानी।
1: जय भवानी। तो बता दीजिए आज की फरमाइश।
0: आज के फरमाइश बा, तोरा मन दर्पण कहलाए। काजल फिल्म का गाना है
1: जी,
0: ये काजल फिल्म का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये भजन है।
1: अच्छा,
0: ये भजन है और इसको रवि साहब ने संगीत दिया है, लिखा है साहिल उद्यान साहब।
1: ठीक है, और गाना सुनाएंगे?
0: गाना तो सुनवाएंगे सब, आपको भी और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार को भी, और पूरे सिवान जहाँ तक ये हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी जितने श्रोता है सबको।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है जी,
1: जी
0: कब तक सुनने को मिलेगा?
1: आज नहीं तो कल बजे।
0: ठीक है जी।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो 90.4 FM।
11: कैसी हैं मैम?
10: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप? और आपका नाम? कृति जी। तो कैसी हैं आप?
11: बताइए भारती मैम कैसी
10: हैं? भारती मैम भी अच्छी हैं।
11: आप नहीं
10: आई हैं?
11: नहीं, उनका तो नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है।
10: जी जी, वो भी बहुत जल्द चलेगा।
11: और सब बताइए?
10: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए। खाना हो गया आपका? जी। तो क्या है आज की फरमाइश? कौन सा
11: बता रहे हो?

0: वेलकम। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हैं? ओके तृप्ति जी, तो फिर मैं प्ले करती हूँ गाना आपका।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: ओके

0: हेलो जी,
1: हेलो
0: नमस्कार मैडम जी।
1: जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश
1: जी, क्या हाल चाल है जी आपका?
0: से। बस मैडम जी, दुकान पर बैठे हैं, सिलाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, बारिश हो रही हो रहा है? अच्छा,
0: बारिश बारिश ने छोड़ा है, पानी गया चला गया, अब तो वापस। जी
1: बढ़िया। तो खाना वाना हो गया है आपका?
0: जी हो गया, दाल बाटी बनाई थी आज, आइए भोजन कर लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल आएंगे।
0: ये कौन, भारती जी बोल रही है क्या?
1: नहीं
0: सोनी जी,
1: नहीं
0: मनोरमा जी।
1: हाँ जी,
0: जी तो मैडम जी, मेरी पिक्चर का नाम तो पता नहीं, लेकिन अल्ताफ राजा का गाना है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
1: थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
0: अल्ताफ राजा ने गाया है ये, इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ राजा का है ये,
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये गाना आप तीनों मैडमों को डेडिकेट रहेगा। गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है, और जितने भी सभी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका
0: कब बजेगा ये
1: शाम को?
0: जी मैडम, धन्यवाद।
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM। नमस्कार जी, सब ठीक बात बताए, होता है अच्छा, सभी ठीक
8: बात।
7: कौन गाना दो लाइन बता देती तो सही रही। एक बार गाना क्योंकि सुनाई के लिए आता है,
8: गाना तो बहुत लोग सुनने वाला सब्जेक्ट, नाम आज ऐसे भी लेकर रखे।
7: अपना नाम बता
8: दे, हमारा नाम प्रमोद कुमार,
7: और कहाँ से?
8: कलामेट में देखता
7: है।
8: अभी तो संजाम में है।
7: मौसम कैसा बने के?
8: मौसम बारिश के हल्का हल्का भर रहा होने गोपालगंज में।
7: गोपालगंज में भी ठीक बार, कभी धूप होता कभी छाँव होता,
8: धूप मिले तो अच्छा होता, बारिश तो अभी नहीं गया।
7: चलिए तो फिर
8: आज बाजी काल,
7: आज ना तो कल बाजी रही दोनों दिन में जी, तो प्ले करता नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 एफएम में।
0: महाराष्ट्र
1: जी।
0: हाँ, गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आपका जो फिल्म है आजकल जो मतलब गोरी हकदारिया गाना सुन रहा है।
1: कौन सा?
0: गोरी हकदारिया, हरी हरी कुड़िया,
1: गोरी कलैया।
0: हाँ, गोरी कलैया आजकल जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्र को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ, दोस्त मित्र का ऐसा है। ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 एफएम।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में। नमस्ते जी, नेहा जी कैसी हैं? जी जी, मैं तो ठीक हूँ, और नाश्ता पानी हो गया
11: है।
10: बढ़िया, तो क्या है आज की फरमाइश? कौन बात नहीं की, अरे सोच के बता दी, 2 मिनट में।
11: मैडम जी का गाना बहुत अच्छा है।
10: जी जी, क्या बोल रही है, एक बार और बताइए। तो
11: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा आता है। दिव्या मैडम जब आती है तो पहले
10: जी
11: ऐसा ही आपका आवाज आता है, इसीलिए बोलते।
10: चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं।
11: मेरा बहुत आवाज का अच्छा नहीं आता है।
10: नहीं नहीं, आपका भी आवाज अच्छा। तो फिर गाना याद आया आपको?
11: गाना याद सुना दीजिए, साई वाला साई वाला।
10: साहिबा जी, अच्छा। और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
11: गाना भाषी मैडम को जितना सुनता है इसको, सुनता है सर उससे।
10: ओके नेहा जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
11: जी मैडम जी, नमस्ते।
10: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम में।
0: मैं सिकंदर से बोल रहा हूँ मैम, स्कूटर।
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: बोलते मैम की गाना सुने के बाद
1: बता दी,
0: तो जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, यही वाला गाना सुना।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं
0: आप? सबसे पहले आपको मैं जितने रेडियो रिंकिन सुने सभी को और एक कमरान भाई उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी, ले करते हैं गाना आपका।
0: अच्छा, कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिन 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
15: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
14: अभी ठीक है, आप लोगों दुआ से।
15: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से, राघव जी।
15: चलिए, तो कैसे हैं आप?
14: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
15: जी हम लोग भी बढ़िया है।
14: चलिए बढ़िया का काम है
15: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
14: जी जी नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं हूँ। आपका नाश्ता हुआ है?
15: हो गया। तो फिर क्या है
14: आपका नाम मैम?
15: जी मेरा नाम मनोरमा।
14: मनोरमा, अच्छा आज दूसरी बार बात हो रही है।
15: जी जी,
14: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
15: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
14: मैम गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
15: चलिए कोई बात नहीं,
14: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
15: जी जी बिल्कुल।
14: नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। बस इतना ही
15: जी, इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
14: कहाँ इतना गा रहे हैं, आप लोग के आप लोग सब शोर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
15: नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
14: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
15: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं। पर जो गाना बताए वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
14: पहले तो आपको और जितना रेडियो रिमझिम जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए, आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
15: जी जी बिल्कुल, आ रहे हैं तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
14: थैंक यू मैम।
15: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
14: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन में।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, करियावाद नंबर 1 से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं।
0: मनोरमा मैम
1: जी,
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ, हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है, इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: अच्छा जी, सो भी

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ।

0: है माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
7: जी अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम
7: जी, मैं हर्षा बात कर रही हूँ सूरत से।
6: जी कैसी हैं आप?
7: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
6: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
7: सुना है
6: जी,
7: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरे पुराना वाला सॉन्ग है ना, वही वाला।
6: आप दो लाइन गा के सुनाएंगे मुझे?
7: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
6: जी जी
7: वही गाना। दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
6: ओके तो सुना दीजिए।

0: जी, थैंक यू मैम। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी। जी क्या हाल चल रहा?
0: हाल चाल तो नहीं चल रहा
1: जी। आवाज का कट क्या होता
0: है? हाँ, रुको के कट जाता है, नीचे भाग जाता था। और बताओ
1: कौन था? नहीं
0: जाना सुना दी,
1: बता दी।
0: तुम्हारा काम है तुम पर नाम
1: एक बार और बता दी।
0: मेरे अंदर तुम्हारा काम है नाम है
1: जी जी। और ये गाना सुनवाए के भी क्या होता? नहीं तो फिर प्ले करते हैं जब गाना।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: खेले हम। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165,
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ऑनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 97714-8661।

0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हो रहा है यहाँ, इतने पैसे कहाँ से आए? बोल।

0: हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को।
0: आप फिकर मत करिए, मैं हूँ ना।
1: जरा देखो तो सही।
2: अरे क्या हो रहा है?

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: ओ मेरी सासू की, भर ले पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो?
2: ए सेठानी, नीर बनन चलेगी
1: आज? ना जाऊंगा, ना गई तो पूरी बनठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, नुए चली जा।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: बड़ा चाह सी कि पहला प्यार हुंदा फिर व्याह।
1: तू किदे नाल प्यार करना?
0: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
1: ये ता है, उन्हां च व्याह नहीं हुंदा, उन्हां च कल्ला प्यार हुंदा।
2: जानवर किसे थां दे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: शर्मा।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए।

0: 9066-7231।
1: कॉल कीजिए 9006-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देशभर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। यह सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
3: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
1: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
3: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
1: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
4: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ इन 5 तटीय से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मॉनसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 पान अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
6: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
1: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231।

0: जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की,
0: डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84।

0: 9907665750। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434668 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा

0: सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up.
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.5 FM में।
10: और क्या हाल चाल है मैडम?
11: जी जी, सब बढ़िया है, अपना बताइए।
10: बढ़िया है, और बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
11: नहीं, बारिश
10: आज एक फरमाइश सारेलाल का फिल्म में का है। कोई
11: कौन सा
10: सारेलाल का? वो कोई फिल्म में का गाना है, उसको गा करके बता दे क्या?
11: जी बिल्कुल।
10: हम धरती के राजा, रानी नील गगन के, हम धरती के राजा, रानी यही वाली गाना है।
11: और गाइए, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
10: और याद नहीं खेलो मैडम?
11: चलिए कोनो बात नहीं है, और गाना बताइए। ओके ओके, सुनवाए के भी चाहता नहीं।
10: इससे पहले आपको सुनवाना है ना, फिल्म में का गाना है उसका।
11: जी जी।
10: कोई फिल्म आया था, हम देखने के लिए गए थे श्याम हॉल में, 3 दिन हम लोग देखे थे लगता।
11: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
10: जी ठीक है, ओके मैडम,
11: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.5 FM में। जी कैसे हैं आप?
1: ठीक बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया।
1: तो क्या नाम है?
0: जी
1: का नाम है क्रांति का कोई गाना बजा दीजिएगा, सब गाना अच्छा।
0: क्रांति में का कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ हमारा थमका बदल गए चाक, जो भी आपका जो इच्छा है जो भी गाना अच्छा
0: है। नहीं
1: कर
0: दीजिए, आप ही बता देते तो सही रहता।
1: यही जो बताए हमारा थमका बदल गया चाल,
0: क्या ये आप दुलाई मुझे गा के बताएंगे?
1: चलिए वही जो बताए वही।
0: जी जी वो तो ठीक है, आप दुलाई मुझे गा के बताते तो
1: यहाँ पर दूसरी नाली बैठे हमको। चलो चलिए ठीक है, दूसरी बार गा
0: ठीक है। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
1: रजाक है, रफीक है, नूर मोहम्मद है, इम्तियाज है और आप है, आपका टीम है। उस दिन जो सोमवार को रिकॉर्डिंग किए थे वो टावर नहीं मिल रहा था, पता ना जी दोबारा लग लगी नहीं रहा, याद है ना?
0: जो सोमवार को जो रिकॉर्डिंग हुआ था तो बच चुका है।
1: बच चुका है, मैं सोचा की रिकॉर्डिंग कुछ गर्ज फिल्म का इसे बताया था, हम सोचा की चलिए रिकॉर्ड गया तो रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं इसलिए।
0: जी तो आप गाना बताएंगे तो रिकॉर्ड हुआ होगा, थोड़ा देर से बच गया होगा। चलिए फिर तो ये वाला गाना आप प्ले करते हैं।
1: ठीक है
0: जी, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: युवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो मैडम, नमस्कार।
8: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.7
7: जी। उनको गाना सुनना है मैडम।
8: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
7: मेरा नाम है मन्नान, कपरपुरा से बोल रहा हूँ।
8: जी, और कैसे हैं आप?
7: पहले से उतना अच्छे नहीं है।
8: क्या हो गया है?
7: पहले से उतना अच्छा नहीं है इसलिए कि आजकल कॉल हम नहीं कर रहे हैं गाना के लिए।
8: अच्छा जी, ऐसा क्यों?
7: आज क्या मन में आया है कि कॉल कर रही है?
8: जी, तो कोई प्रॉब्लम हुआ जो कॉल नहीं कर रहे?
7: नहीं हुआ, नहीं है। आप लोग थोड़ा सा जो 1 बजे वाला, 12 बजे वाला प्रोग्राम में आप लोग कॉल उठाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम है?
8: अच्छा जी, तो क्या है ना कि अलाउ नहीं होगा, इसीलिए भारती जी कॉल नहीं उठाती होंगी।
7: हाँ वही। अच्छा, भारती जी नहीं बोल रही, मनोरमा बोल रही है?
8: जी हाँ।
7: अच्छा हाँ, तो ये शिकायत तो था, हम समझे कि भारती जी है, उन्हीं को शिकायत सुना रहे थे हम।
8: अच्छा जी, कोई बात
7: ना, तो हम नहीं समझते थे कि मनोरमा जी है ना।
8: जी,
7: तो कोई बात नहीं है। अब वो रहती तो उनसे हम शिकायत करते और थोड़ा सा किसी तो उसमें कोई नहीं है, तराजगी नहीं है ना। और रही बात की हमको ये गाना सुनना है मैडम, ई आई का बहुत गाना बना है, तो ये गाना है मार दिए जाए कि छोड़ दिए जाए, ए आई वाला गाना है ना मैडम, यही गाना सुनवा दीजिएगा ना मैडम। अच्छा आप कौन कौन से प्रोग्राम में आती है मैडम?
8: मैं तो ऑल प्रोग्राम चलाती हूँ, लेकिन अभी तो 12 बजे वाला शो नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको भी तो बनाना पड़ता
7: है। इसके बाद कोई प्रोग्राम में आप नहीं है?
8: नहीं, इससे पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं है।
7: ओ, आपको यही प्रोग्राम दे दिया गया कि आप यही बनाओ और बजाओ है? तो मिलना चाहिए और भी कोई प्रोग्राम तो मिलना चाहिए, जैसे उनको जो है भारती जी को मिला है तो एक दो प्रोग्राम तो करती हैं, आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको भी कुछ दिन हो गया रेडियो स्टेशन में काम करते हुए। वैसे तो रेडियो इंजन तो बहुत ऊंचाई पर तो चला गया है, और आ के जो जो आदमी आ रहे हैं तो उन लोगों को प्रोग्राम मिलना चाहिए, कोई कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर आता है उसे सवाल जवाब करना, कोई कोई बात पे जो है सवाल जवाब करना, या कोई आर्ट बनाना है ना, तो ये सब होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ज्यादा विशेष बात नहीं है मैडम, यही बात था कि हमको AI वाला जो है गाना वो सुनवा दीजिएगा।
8: डेडिकेट
7: तो अब क्या कहे, मनोगत जी के खास ये गाना रहेगा मेरे तरफ से, डेडिकेट मार दिए जाए कि छोड़, और किसी को नहीं देंगे, आज मनोरमा जी को दे रहे हैं डेडिकेट ये गाना। आप गाना को फुल इंजॉय कराइए, सुनाइए गाना ताकि हम भी सुन ले, आज बज जाएगा मैडम?
8: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा।
7: हाँ तो पूरा कोशिश करके आज बजाइएगा, 5 बजे एकदम रेडियो खोल के आप बैठे रहेंगे।
8: जी जी बिल्कुल, ले करते हैं गाना आपका, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.5 FM में।
1: नमस्ते। गाना सुना है?
0: गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: साहिल कुमार है।
0: साहिल कहाँ से बोल रहे हैं
1: आप? मरदा।
0: अच्छा, साहिल जी क्या हो रहा था?
1: अभी कॉल कर रहे थे।
0: अच्छा, तो चलिए कॉल तो लग गया है। क्या है
1: सैयारा फिल्म का कोई भी गाना बजा दिए?
0: कोई भी और सुनाना भी चाहती हूँ किसी को,
1: जितने भी रेडियो में।
0: ओके साहिल जी, तो फिर मैं गाना प्ले करती हूँ आपका।
1: थैंक यू
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.5।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
11: गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग,
11: बात नहीं बोल रही क्या?
10: नहीं जी, मैं मनोरमा।
11: ओ मनोरमा मैम, थैंक यू मैम, आपको गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप हमारी बहू का बहुत अच्छा गाना सुनाई जन्मदिन पे, बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैम अभी क्या हो रही है आप?
10: कुछ नहीं, बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
11: ओ नाश्ता तो हो गई?
10: जी जी, और आप किए?
11: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस नाश्ता तो करके अभी बैठे हैं। कॉल लगा रहे थे, बिजी बिजी बता रहा था। हम तो सोचे कि आज लगेगा नहीं, कम से कम मैम को थैंक यू बोलने गाना बजाने के लिए। मैंने एक गाना सुना था आज।
10: जी बता दीजिए।
11: वो गाना है शोले फिल्म का, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
10: क्या गाना आप मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
11: हम तो गाना गाते ही नहीं, आप बोल रहे थे हम

0: छोड़ेंगे। नहीं नहीं गाना सुनना था मैम
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
0: कहाँ गाए मैम, बहुत अच्छा, बहुत गंदा गाना गा।
1: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप।
0: बस हम चाहते हैं कि बस आप लोग तो इसी तरह से प्रेम मोहब्बत बना हो रहे थे, बस हम लोग को मनोरंजन करते रहे। मैम ये गाना कब तक बजेगा मैम?
1: ये गाना आपको शाम को चलेगा?
0: नहीं आप तो बोलते हैं शाम को और 3 दिन बाद बजता है मैम।
1: आप क्या करिएगा, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो आगे पीछे हो जाता है।
0: इंतजार करते रहते अब मेरा गाना आएगा, अब मेरा गाना आएगा। जब नहीं गाना आता तो एकदम उदास हो जाता है। फिर सेकंड दिन इंतजार करते अब आएगा, अब आएगा, फिर भी नहीं आता। फिर थर्ड दिन आता है गाना, हमें बहुत खुशी होती है।
1: सुना दिया जाता है ये गाना आपका 2 दिन में सुना दिया था, या तो आज नहीं तो कल।
0: तो आज तो फ्राइडे है मैम
1: जी,
0: तो मंडे को हो जाएगा ना, सैटरडे को। चलिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी मिलती है। बहुत भी बहुत खुश थी कि हमारे जन्मदिन पे आप गाना, बहुत नाइस सॉन्ग था मैम, बहुत नाइस सॉन्ग। हमने बोले थे कि आप अपना पसंद से एक गाना गाइए, बजवाइएगा, बहुत अच्छा लगा मैम। इसके लिए बहुत थैंक यू, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरह हम लोग को एंजॉय करते रहे। थैंक यू मैम
1: जी, मोस्ट वेलकम। वैसे नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम है शंकर गुप्ता, मैं गया जी से बोल रहा हूँ, बोध गया से।
1: अच्छा जी
0: तो जी मैम, थैंक यू मैम।
1: गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: गाना सुनने का मैम।
1: जी गाना सुना, नाम बता दिया अपन।
0: सुधीश कुशवाहा।
1: सुधीश
0: जी।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैम
1: तो नाश्ता भैया
0: कौन?
1: हमारे भी हो
0: गया, लेके चलो
1: वो भी चली बहुत जल्दी, दो तीन दिन में वो चालू हो जाए।
0: आजकल हमारा पनीर
1: आवाज की फरमाइश
0: सुना दी, हल्का कर जाएगा ना। तुम तो ठहर पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: कौन सा?
0: तुम तो ठहर पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: तारीख जाना गा के बता सकते
0: नहीं? देसी की उतना महंगा गाना याद रह लगेगा।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चली जाना क्योंकि सुनाई के विचार थे
0: नहीं।
1: ओके, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: जी मैम।
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट।

0: बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो।
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 95.4 FM।
1: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार।
1: भारती मैम बोल रहे हैं?
2: नहीं,
1: मनोज मैम बोल रहे हैं।
2: जी
1: कैसी है मैम?
2: जी मैं खुश हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम हम भी अच्छे हैं, और सब आगे लोग कैसे हैं?
2: जी सब कोई बढ़िया है।
1: जी मेरा नाम पप्पू कुमार है, पड़रौना बढ़रिया से बोल रहा हूँ। तो मैम गाना सुना दीजिए हमको।
2: बता दीजिए।
1: तीज का गाना कुछ अच्छे कलाकार का सुना दीजिए।
2: तीज का?
1: जी जी।
2: और जो गाना ये बताया वो डेडिकेट भी है?
1: अब रेडियो रिमझिम जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी सुनेंगे, और मैम आज बज जाएगा?
2: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
1: जी कैसे, आज हम जा रहे हैं गोपालगंज ही, तो सुन रहे थे कि वहीं से हम सुन ले आज।
2: बिल्कुल
1: ठीक है मैम, तो गाना सुनवा दीजिएगा, और तीज के सभी भाई और बहनों को बधाई।
2: जी जी आपको भी।
1: जी मैम।
2: जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 95.4 FM में।
0: नमस्कार, शैलेश कुमार वर्मा
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया,
1: तो क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप?
0: मैं तो स्टोरकीपर की नौकरी करता हूँ 12 घंटे।
1: अच्छा जी, तो क्या है आपकी फरमाइश?
0: फरमाइश है, गाना है ना, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
1: जी,
0: सुना
1: गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
0: गाना अपनी वाइफ को, आपको, तमाम रेडियो रिंग सुनने वाले श्रोताओं को और रेडियो रिंग परिवार को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं आपका सुंदरी सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
9: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
10: सलाम मैम।
11: वालेकुम अस्सलाम,
10: कैसी हैं मैम?
11: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
10: जी हम भी अच्छे हैं मनोरमा मैम।
11: जी
10: हेलो माय चॉइस में आपका भी स्वागत है हमारे साथ।
11: जी जी जी।
10: और बताइए मैम, नाश्ता हो गया?
11: हाँ नाश्ता तो हो गया, और आपका?
10: जी हमारा भी हो गया। चलिए तो नाम बता देते हैं, मेरा नाम सफरोजली, गोपालगंज से बोल।
11: जी जी, गोपालगंज में कहाँ?
10: गोपालगंज में गाँव है आटिल टोला, वहीं से। अभी फिलहाल मैं गोपालगंज टाउन में ही है।
11: कहाँ, किस जगह?
10: फिलहाल मैं अभी चंद्र रोड में है।
11: अच्छा तो वहीं पर है?
10: नहीं, घर तो हमारा आखिर टोला गांव में है।
11: तो फिर यहाँ पे
10: काम करते हैं मैम।
11: अच्छा जी,
10: शॉप है अपनी।
11: चलिए बहुत अच्छी की बात है
10: जी। हम कहीं भी रहते हैं रेडियो सुनते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं।
11: जी जी, चलिए आपको दिल से धन्यवाद।
10: मैम एक बात बताते हैं आपको, मतलब रेडियो सिस्टम का इतना लगाव हो गया ना, इसके अलावा कुछ भी सुनने का हमको मन ही नहीं करता। हाँ मैम, आज तो चले ना चले लेकिन सुनते रहते हैं।
11: तो भी बहुत जल्दी चलने
10: वाला है, नहीं चल रहा है तो मन नहीं लग रहा है मैम, कोशिश कीजिए चलाने का।
11: जी जी, बहुत जल्द चलेगा
10: और ये तो चलता ही रहता है। मैम तो हमको आज एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए, हिंदी तो हमेशा सुनते ही है।
11: बता रही है
10: कि गाने का नाम है याद है, गाने का नाम है याद और प्रमोद करेमी का आवाज है, यही सुनना है।
11: गाने के बोल,
10: गाने का बोल यही है याद, ऐसा ही कुछ नाम है गाने का।
11: क्या बोलेंगे कि नहीं बता सकते हैं?
10: ये वाला गाना तो हमको खुद याद नहीं, लेकिन कहीं पे सुने थे, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए सोचे कि यही वाला सुन ले आज। याद ऐसा ही करके सर्च कीजिएगा आ जाएगा।
11: गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
10: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, भारती मैम को और सभी रेडियो दोस्त को। कोई हमको तो डेडिकेट करता नहीं लेकिन हम सबको करते हैं। और चलते चलते तो ये एक बात बोलेंगे मैम, उस दिन मेरा फर्स्ट टाइम बजा थी इसके लिए हम इतना खुश है, आपको मतलब बता नहीं सकते कितना खुश है, लेकिन बहुत खुश है। बुधवार को फर्स्ट टाइम बज गया मेरा। हाँ मैम, फर्स्ट लगाए हैं, दो तीन मिनट पहले से लगा रहे थे।
11: चलिए प्ले करते हैं गाना।
10: जी मैम, हमको रेडियो का रूल पता हो गया है, इसलिए बहुत पुराना है, इसलिए कैसे कब कॉल करना है। चलिए मैम, तो एडवांस में धन्यवाद।
11: तो प्ले करते हैं।
10: बाय
11: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। ठीक था, अपन बताएं। क्या तबियत ठीक नहीं क्या जी?
1: ठीक हुआ,
0: बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा हाँ हाँ, हो गई बार और भाई ली। ठीक है, तो क्या बात की फरमाइश?
1: हिंदी सॉन्ग बजा दी कौन?
0: अच्छा, बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा हेलो,
1: बोली
0: कावल लो कुछ बोल बता जी। आज खुश नजर नहीं किया तो कुछ तो बात बात
1: बनी है इसे।
0: चले ठीक
2: है, सूते क्यों ना फोन लगे ला?
0: तनिसा जागलो के मुई से।
2: नंदन क्या बोल रहा है? फोन में धरा के हम के चौकी पर रख के चल बनी है। हम कहीं ना बती दी बाकी पति आवे लग ली है।
0: चली रोग लो अपना में झगड़ा कर ले, मैंने हमरा से झगड़ा थोड़ी बा।
2: हाँ, इधर बात सही बा।
0: चली कौन बात ना, लड़ाई ना कोई गला। और गाना जन बतनी है क्यों सुनाए की बिचार तनी?
1: हाँ, सबसे बोले लोग के भारती दीदी के सोने दीदी के जितना सुनता है लोग हम लोग के और हम सुन।
2: मैंने मेरी दी एक्सी सियाल बेन के साथ एक मिठाई लिया किया जन तो ना खिल गया।
0: हाँ, मिठाई आ जी शाम के।
2: हाँ,
0: और अपन भैया के ना सुनाया
1: ना?
0: अच्छा चलो ठीक बात, तो गाना प्ले करते नहीं?
1: ठीक
0: जी, गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करी लो।
1: ठीक।
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
6: नमस्ते जी।
7: नमस्ते, खाना रोज से खाई थी क्या? हम
6: ना
7: ना कहाँ फोन आई था
6: ना फोन आई ला रहे देखिए पानी में पिए थे
7: सर, कैमरा लगे मानी क्या
6: कैमरा नहीं लगे मैंने और मैंने की पानी में पिए थे फोन में ना उठा कोई नहीं है।
7: हाँ हो सकता
6: है, 20 से 25 मिनट हो गया और अगर ना उठेंगे तो हम 25 फोन
7: झगड़ा वगैरह हो गया था? झगड़ा मत करो, मान जान थोड़ा देर बाद। अभी तो अपना नाम बता दी। कहाँ से?
6: कहा
7: बात की फरमाई?
6: कौन सी
7: कौन सा
6: भोजपुरी सॉन्ग?
7: भोजपुरी में कौन सा?
6: भोजपुरी में भाई बजाती हूँ, जय हो ना पूरे बुआ बोलाऊंगा, जदिया मारे बंगली सॉन्ग बजाती।
7: अरे बता के बता सकते
6: नहीं है ना लगी,
7: माँ समझ में नहीं गई, थोड़ी बता देती।
6: मारे यही
7: जी मारे के भी चाहता
6: नहीं क्योंकि स्पेशल में कल्पना दी के, सोनी दीदी के, भारती दीदी के और पूरा रेडियो रेडियो को सुनाना है। रोजा आजकल छुट्टी नहीं की मारे क्या बना मेला घूमने खातिर, रोज रोज मेले बा
7: तो करे इंजॉय। चलिए तो फिर और गाना प्ले करता नहीं?
6: ठीक बात, ठीक।
7: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है
1: टीम 94
0: हमने। और बताइए जी, सब बढ़िया है? आप बताइए अपना, आप कैसे हैं?
1: प्रभु की कृपा चल रहा है। आपको प्रोग्राम सुनने मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी,
1: आपका क्या नाम हुआ मैडम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा जी है
0: जी।
1: और कोई भारती जी भी है?
0: हाँ हाँ उतनी है।
1: वो भी आती है
0: जी।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि मेरा ये फरमाशी वगैरह कब सुना गया
0: जी?
1: आप गाना मेरे को अब मिल जाएगा फरमाशी जी को बोलूंगा।
0: ये गाना आपका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, दोनों दिनों में।
1: हाँ
0: जी।
1: आज का समय चला गया?
0: नहीं, आज भी बच सकता है। अगर बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो कॉल आगे पीछे हो सकते हैं।
1: अच्छा, नहीं कल 9 बजे से?
0: नहीं, शाम को 5 से 7 के बीच।
1: शाम को 5 से 7 के बीच आज नहीं तो
0: आज भी चल सकता है।
1: अच्छा, आज भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है?
0: नहीं,
1: ऐसा नियम हो ना कि जिस दिन हम फरमाइशी करते हैं उसी दिन शाम को गाना आ जाए तो अच्छी उतर जाए।
0: जी जी, वो तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: जैसे जैसे हम आज अभी रिकॉर्डिंग करवाया, अभी फोन से बात किया और हमारा शाम को 5 बजे गाना मिल जाए मेरा पसंद का, वो आदमी एकदम मैंने उनसे कोई ठिकाना नहीं कब मिलेगा, तो फिर आदमी विचलित हो जाएगा ना।
0: जी जी बिल्कुल, तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: आप लोग का भाई गोपालगंज में रेंजिंग स्टेशन 4 चांद लगा दिया है और आगे बढ़ेगा। ये तो बात मानना पड़ेगा भाई, अभी शिवाजी बसौली से बोल रहे हैं
0: जी। तो क्या आप रेडियो रेंजी में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, एक बार इसको पहले भी किया था, लेकिन मेरा फरमाइशी आया ही नहीं, कब आया पता ही नहीं चला।
0: अच्छा, तो सुने नहीं होंगे आप?
1: नहीं सुने नहीं, 2-3 दिन लगातार हम सुने, लेकिन वो क्या ना है प्रभु की कृपा से मेरे को कब आया कब नहीं गया पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर डिटो रहेगा ना कि आज शाम को मेरा फरमाइशी पूरा हो जाएगा या कल शाम को पूरा हो जाएगा या सुबह पूरा हो जाएगा कल 9 बजे, तो मतलब शाम को ही पूरा हो जाएगा, सुबह होता है
0: जी। आपका ये कॉल जो रिकॉर्ड करा रहे हैं शाम को भी पूरा हो सकता है?
1: नहीं तो कल शाम को,
0: नहीं तो कल शाम तक ठीक है।
1: अच्छा, कल शाम को ठीक है। 5 से 7 का हम इंतजार करते हैं और मेरा गाना का है जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला।
0: जी, वैसे आप अपना नाम नहीं बताए?
1: हाँ जी, मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, आप पूछे नहीं मेरे को।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: और मैं हूँ यहाँ तेलिया बसौली नबीगंज बाजार से।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: ये हरदिया से पश्चिम पूरब पड़ता है।
0: अच्छा जी,
1: हरदिया मोड़ से पूरब पड़ता है 6-7 किलोमीटर बसौली
0: जी।
1: जी मैं वहीं से बोल रहा हूँ, और मेहरबानी करके अब मेरा गाना सुनाइए ताकि मेरे को खुशी होगा। बाकी का गाना आदमी नहीं लेता है, लेकिन आप लोग से बातचीत करने में आनंद आता है, वो कुछ और है।
0: जी जी, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये गाना आपका आज ही चले।
1: आज प्रयत्न कीजिए, आज शाम को 5 बजे चल जा रहे थे, कल तुम्हारे श्योर 100% मैं आज 5 बजे और कल 5 बजे में इंतजार करूंगा आपका। है
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए, ओके, थैंक यू।
0: और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त जो सुनेंगे सारा, तो मेरा पूरा रिंजिन का सोता है, सब मेरा दोस्त है, सब सुनेंगे, अकेला आप थोड़े सुनेंगे, आप भी सुनिएगा।
0: जी बिल्कुल, तो फिर प्ले गाना आपका।
1: हाँ जी, प्ले कीजिए
0: रेडियो रिंजिन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
10: जी नमस्कार।
11: नमस्कार,
10: क्या हाल खबर है जी?
11: जी बिल्कुल बढ़िया।
10: आवाज पहचानी आपने?
11: पहचाना सा तो लग रहा है।
10: बताइए।
11: सही बताते हैं, आप ही बताते तो सही रहता।
10: पहचान भी गई है मनोरमा दिया करेंगे कि आप ही बता दीजिए।
11: पहचान गया लेकिन कहीं कुछ और नाम रख दे आपको बुरा लगे।
10: कहा बुरा लगेगा, एक बार बताइए तो सही।
11: जी जी, तो मैं आपको बता दूँ की आप दिलीप जी बोल रहे हैं ना?
10: जी जी ही बोल रहे हैं। मैं 11 बजे 10 मिनट ट्राई करते करते 11 बजे 16 मिनट बोल रहे हैं। उस समय से प्रतीक्षाएं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। जिस तरह की सबको 10 मिनट से लगता है ट्राई करने के लिए। और बताइए कैसी हैं?
11: मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
10: हम भी बढ़िया हैं, बस अभी गाड़ी पार्किंग से निकाले हैं। सोचे हैं कि पहले मनोरमा जी से बात कर लो उसके बाद निकले हैं। क्या है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सभी आदमी को प्रतीक्षा रहता आपसे बात करने के लिए।
11: अच्छा जी।
10: क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकती, कॉल के माध्यम से ही बात हो सकती। आती हैं।
12: जी जी।
10: तो मौसम कैसा है अभी दोपहर में? यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
12: इधर मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
10: तो बारिश होने के चांस है कि नहीं?
12: बारिश तो होगी ऐसा तो लग रहा है।
10: मौसम लग रहा है बारिश का। और भारती जी का क्या हाल चाल?
12: वो भी ठीक है।
10: चलिए बढ़िया ही होनी चाहिए, आप दोनों खुश और खुशहाल रहे।
12: हम लोग भी
10: चलिए, ऊपर वाले की दुआ होता है, सब ऊपर वाले की कृपा होता है, लेकिन नीचे वाले का वही होता है कि मुख से आवाज आता है कि हाँ आप लोग खुश रहें, तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ आवाज निकलती रहती है। तो नशापन सही से हुआ ना?
12: हाँ हाँ हो गया।
10: हाँ हाँ हम भी किए हुए हैं। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बढ़िया से किए हैं कि नहीं। बारह साढ़े बारह बजे तक आपको जो है ना कॉल से दस बस दस बस आपको जवाब करना पड़ेगा। पानी साथ में लेके बैठिएगा ठंडा बोतल, कहीं खराब ना हो।
12: जी
10: एक गाना है, हमारी दुलारिया हो चले जइया ना सेवा करके हमारा।
12: क्या बोलें, गा के बता सकते हैं?
10: इसका बोल है, हमारी दुलारिया चले जइया ना सेवा करके हमारे गई है लास्ट में बटे। तो ये बहुत अच्छा गाना बटे ना देगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं और सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी, इनका भारती जी है, सगीर अंसारी, महबूब आलम, मुस्तफा आरम, सोनू भाई, आजाद भाई और अफर भाई हैं, अहमद भाई हैं, और इसके बाद जो है अफर जी हैं, और सभी दोस्तों के गाना जो रिक्वेस्ट है तो सुना दीजिएगा। बाकी जो है और भी लाइन में लगे होंगे, तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
12: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जिम 90.4 एफएम में।
0: मनोरमा मैम प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: एक क्वेश्चन बने, गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: जी जी बानी, अपन बताई
0: पहचाना तनी।
1: हाँ हाँ पहचाना तनी।
0: क्वेश्चन बानी, तबियत पानी
1: सब ठीक ठाक बा? हम ठीक बानी।
0: मौसम बदला था।

0: तो
1: कैसे बनी काम पर बनी आज तो जल्दी लग गई ना 18:30 बार में लग गई हाँ
0: वे कहे ला रही कि बड़ा जल्दी लग गई है
1: हाँ 18:30 बार लगानी तो लग गई ना हम लगा दूँ ऐसे निश्चिंत हो जाऊँ तो टेंशन ना रही
0: खाली तो सब बताए नाश्ता सब हो लेकिन
1: नाश्ता कह के आदमी 9 बजे काम पर लगे ला नजदीके बा काम नजदीके बा 2 मिनट लगे ला में नाश्ता पानी कह के आदमी 9 बजे आई अब के बाद काम पर लगी अभी एगो टेंशन रहे लगी फोन लग जाए एक बाद में काम होते रही चला गए नाश्ता पानी के लिए
0: हाँ हो गई बा चली तो क्या बात की फरमाइश
1: आज तो रउड़े के सुनाए के बा एगो गीत बा चुन के रख ले मैंने एकदम रउड़े खातिर तो वही तो बताई
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताई
1: की रउड़ा रउड़े अपने से फरमाई
0: ना ना फरमाइश हम मजा में रहू बताई तो पहले
1: अरे हमार ये फरमाइश बा की सासु के न खरा ससुरा में झेलही के परी कनो करबु पढ़ाई रोटिया दिलही के परी
0: अच्छा ये गाना
1: हाँ ये गाना
0: चली गाना तो ठीक
1: खास करके रउरा के आरती जी के आउ केहू के नहीं सुनाये के आउ केहू के नहीं सुनाये के तुम ये आदमी सुनाये तो
0: अच्छा अच्छा अभी ठीक बा
1: सुना दे हम ये बड़ा की अच्छा
0: काम के
1: हाँ हमारा दिन आज का चली
0: काहे
1: काहे हमारा तो लास्ट में चला था
0: ना ना लास्ट में ना चली ठीक बा तो चली प्ले कर देना और गाना
1: ठीक है सर प्ले करो ठीक है। We'll be right back.

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले

0: के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
7: नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार,
7: मैं रमार गुप्ता पहला खास से बोल रहा हूँ।
6: जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मिजाज का मौसम हुआ है, मिजाज का बहुत बढ़िया मौसम हुआ है।
6: अच्छा,
7: ये सुना है?
6: बता दीजिए।
7: गुलाम अली का कोई बढ़िया सा गजल?
6: हाँ बता देते तो सही रहता।
7: गुलाम अली का कोई गजल हो और सुनवाना चाहते हैं सतीश साइकिल दुकान असंदापुर चौक और शंकर भाई से ऋषिया हरपुर।
6: अच्छा सुनिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: और मैडम क्या हाल
0: जी? सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है, मजे में है, काम कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं?
1: सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
1: आज फरमाइश हमको बोल राधा बोल का वही टाइटल सॉन्ग है, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया।
0: जी जी,
1: ये गाना जितने सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

विक्रम के जवाब से संतुष्ट बैताल फिर उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। जिद्दी विक्रम ने फिर उसका पीछा किया, फिर उससे लड़ा, उसे अपने वश में किया और चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। चित्रकूट नगर का राजा रूपदत्त एक बार जंगल में गया तो वहां उसे एक सुंदर कन्या मिली।

0: ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सुनो,
1: क्या हुआ बेटी?
2: एक घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं वो कौन है।
1: महाराज आप?
3: हाँ हम, आपकी सुंदर लड़की हमें यहां तक खींच लाई।
1: महाराज आपको देख के डर गई है।
3: डरने की कोई बात नहीं, आपकी कन्या हमारे महल की रानी बनेगी, हम उससे विवाह करेंगे। आपको ये रिश्ता पसंद है?
1: हमारे अहोभाग्य महाराज,

राजा रूपदत्त उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद अपनी राजधानी चित्रकूट लौट रहा था। तभी रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वो एक गुफा में आ पहुंचे। तभी

0: तू मेरा भोजन है, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा।
1: आप मुझे मत मारिए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा रूपदत्त हूँ।
0: तू राजा है?
2: राजा है तू?
0: आज मैं राजा को खा जाऊंगा, क्योंकि राजा की और मनुष्य के मांस में कोई फर्क नहीं होता है, और उसका स्वाद भी मनुष्य की तरह होता है।
1: आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे प्राण मत लीजिए।
0: जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया, मेरा भोजन मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं तो मैं इसे खा जाऊंगा।
1: इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको भोजन दूंगा।
0: मुझे मनुष्य चाहिए।
1: मैं आपको मनुष्य दूंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं मनुष्य भेजूंगा, मैं वचन देता हूँ।
0: जा राजा जा, आज से 7 दिन के अंदर मेरा भोजन मुझे यहाँ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं चित्रकूट में आके तुम दोनों को खा जाऊंगा। जा।
1: मैं वचन देता हूँ, मैं 7 दिन में आपको मनुष्य भेजूंगा।

0: मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: केवल 6 दिन रह गए, आज से 6 दिन वो राक्षस आ जाएगा।
2: मुझे तो सोच सोच कर भी डर लग रहा है।
0: घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: क्या सोचा आपने? किसी ना किसी तरह हमें एक व्यक्ति को तैयार करना होगा जो राक्षस का भोजन बन सके।
1: बड़ा कठिन है महाराज, भला कौन स्वयं को मृत्यु के हवाले करना चाहता है? धन का लालच, केवल धन का लालच ही किसी को मृत्यु की तरफ आकर्षित कर सकता है।
0: आप जितना धन चाहे हमारे राजकोष से ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे प्राण बचाइए।

0: वाह मंत्री जी वाह, इतना धन, इतने आभूषण और इतना सारा सोना इस मूर्ति में, ये लालच तो किसी को भी खींच कर ला सकता है। आप ये सब ले जाकर नगर के चौक में रख दो और ये घोषणा करवा दो कि जो भी राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हो वो ये सारा धन ले जा सकता है।
1: राजा की आज्ञा के अनुसार वो बहुमूल्य पुतला नगर के चौक में खड़ा कर दिया गया और घोषणा कर दी गई।
2: सुनो सुनो सुनो सुनो, महाराजा रूपदत्त ने राक्षस को वचन दिया है कि आज से 5 दिन बाद वे उसे एक मनुष्य की बलि भोजन के लिए देंगे। जो व्यक्ति सोए या अपने रिश्ते नाते के किसी व्यक्ति को राक्षस का भोजन बनाने के लिए तैयार हो वो इस रत्न जड़ी सोने के पुतले और सारे धन को ले जा सकता है।
3: इतना धन जिसे मिलेगा वो तो बड़ा धनवान हो जाएगा।
4: अरे हो तो जावेगा मगर जीवित ना रहेगा, फिर ऐसे धन का क्या लाभ।
5: देखो भाइयों, मैं तो धन की लालच में फंसने की सलाह किसी को नहीं दूंगा।
3: अरे भाई, जब जीना नहीं है तो इतने धन का क्या लाभ होगा।

0: अब तक कोई नहीं आया।
1: आज का दिन भी बीत गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: जान देना पड़ेगा।

0: और दो ना।
1: कहाँ से दू? 100 बार तो कह दिए नहीं है खाने को, मैं देख लो। और दो ना, कहाँ से लाऊं मैं खाना? जो था वो तो दे दिया।
0: मेरा खाना दे, मेरा खाना दे।
1: अरे मत करो, मत करो। क्या कर रहे हो ये तुम लोग?

0: सच यही होता है। जितना भी लाकर डालो इनके पेट में कम पड़ता है। अरे मर जाओ, क्या रखा है इस जिंदगी में? रोज भीख मांग के कितना भी लाऊं, ये गरीबी मिटने वाली नहीं है। रोज इसी तरह रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना। अरे मर जाओगे ऐसे ही रोते रोते।
1: अब बस भी करो, जब देखो तब बड़ बड़ बड़ बड़। ये तो चलता ही रहेगा,
0: चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अरे इनमें से एक चाहे तो सारे घर को सुख दे सकता है, पीढ़ियों के दलिद्र मिट जाएं, रोज रोज रोटी मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, सुख से रहे। राजा ने खड़ा किया है चौक पे सोने हीरे का पुतला, इनमें से एक मरने को तैयार हो जाए तो जन्म जन्म का शाप मिट जाए। अरे ऐसे भी जी के क्या कर लोगे? मर जाओगे तो कम से कम दूसरों को सुख तो मिलेगा।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: बस कुत्ते की तरह से लड़ते रहते हैं। तो नसीब में रखा है, अरे मर जाओगे ऐसे ही लड़ते लड़ते। कहां से लाकर दूं खाने को? शांति से बैठ के नहीं खा सकते, जो है खा लो।
1: बापू मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ राक्षस का भोजन बनने के लिए। मुझे दे दीजिए वहाँ, और वो सोने का पुतला ले आए बाबू।

मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा।

भोजन। आज राजा का वादा मुझे याद आया, आज वो मुझे भोजन भेजेगा। राजा ने मुझसे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर वो मुझे भोजन भेजेगा।

I don't know.

0: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से एक प्रश्न किया, ये बता विक्रम कि वो लड़का हंसा क्यों और रोया क्यों?
1: जल्दी बता
2: वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
1: हाँ
3: बेताल, लड़का जिस कारण से हंसा उसी कारण से रोया भी। वो सोच रहा था कि जिस राजा को राक्षस से मेरी रक्षा करनी चाहिए थी वो उसी राक्षस को मेरी बलि दे रहा है, जिस माता पिता को मेरा पालन पोषण करना चाहिए था वो मुझे धन के लालच में बेचकर चले गए। सच है, मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। इसी बात ने उसे प्रेरणा दी, वो राक्षस से भिड़ गया और विजय हुआ।
1: बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा।
2: कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों?
1: अरे तू बोला और मैं चला।
2: मैं ये चला।
4: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
5: विक्रम आजा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूं। जिसने तुझे

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: दिवसीय हिंदी समागम का होगा आयोजन। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक दल बिहार में बाढ़ की स्थिति का करेगा सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय। अगले 24 घंटों में पटना समेत राज्य के अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य अभिलेख भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रिका राजभाषा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी की पूरी दुनिया में पहचान है और यह दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
1: हिंदी भाषा एक तरह से बिहार और उत्तर भारत की पहचान भी है। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा इस भाषा का प्रयोग होता है। ये अपने आप में गौरवशाली इतिहास हमारे लिए है। हमारे कई साहित्यकार इसी बिहार की धरती से आए। कवि के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर जी, नागा अर्जुन जी, कई लोग जिन्होंने इस भारत में एक तरह से हिंदी के साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी के साहित्यिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में हर वर्ष 2 दिवसीय हिंदी समागम का आयोजन किया जाएगा। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और यह 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा को नई पीढ़ी के लिए अधिक उपयोगी और सहज बनाना हमारा सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि भाषा का विकास केवल उसके प्रयोग से नहीं बल्कि ज्ञान और जनसेवा के माध्यम के रूप में उसके विस्तार से होता है। इधर आकाशवाणी पटना में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 से 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 30 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। इधर प्रदेश हमारे संवाददाताओं से प्राप्त जानकारी रिपोर्ट।
3: सभागार में आयोजित कार्यक्रम को जिलाधिकारी कुमार अनुराग ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार अधिक अधिक में 14 से 28 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बेगूसराय में जिला साहित्य अकादमी की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 6 रचनाकारों, 2 पत्रकारों और 1 रंगकर्मी को सम्मानित किया गया। छपरा स्थित सारण के आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया गया। भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिंदी के अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रसार से जोड़ने और उसे सहज हिंदी में किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
4: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। हरतालिका तीज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए उपवास और पूजा अर्चना करती हैं। इधर मिथिला में चौठ चंद्र का पर्व भी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व में संध्या काल में महिलाएं रोहिणी सहित चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान और फलों को उत्सर्ग कर चंद्रमा को अर्घ समर्पित किया जाता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राज्य के 15 जिलों में 49 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित आबादी तक भोजन, राहत सामग्री और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 1260 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। 13 राहत शिविरों में 12,260 लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक दल बुधवार को बिहार में बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण करने आएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है।
1: कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। आज ही गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार परसों शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बिहार आएगा, जो पूरे बाढ़ की समस्या का अध्ययन करके कितना क्षति हुआ ये तमाम चीजों के अध्ययन करने आ रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि बिहार की चिंता ब्रिक्स जैसे सम्मेलन होते हुए भी आपने बिहार की चिंता किया।
0: इधर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सादा ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सादा ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन, त्रिपाल समेत पशुओं के चारे और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा लगभग राहत सामग्री, सामुदायिक किचन, पोलोथीन सीट, पशु चारा, मोटर बोट, एम्बुलेंस, डॉक्टर की व्यवस्था, पशु चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की माने आदि जो भी बच्चे का दूध, सारी व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार सरकार करने का काम किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और देश का नाम रोशन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम के अपराजित अभियान, असाधारण टीमवर्क और अटूट दृढ़ संकल्प ने देश को अपार गौरव दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, निरंतरता और अद्भुत जज्बा साफ तौर पर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेटियों ने भारत का नाम एक बार फिर बुलंद किया है। गौरतलब है कि भारत ने महिला एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताबी जीत दर्ज की है। कल खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर घट रहा है। गंगा और पुनपुन नदी का जलस्तर घटते ही पटना जिले में बाढ़ प्रभावित मोकामा, बख्तियारपुर और दियारा इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक, बेनीबाद में बागमती तथा दरौली और गंगपुर सिसवन में घाघरा लाल निशान के ऊपर है। इधर वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक का जलस्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्तर स्थिर है, जबकि इंद्रपुरी बराज पर सोन नदी का जलस्तर घट रहा है। जमुई के झाझा प्रखंड में भारी बारिश के दौरान बलियाडीह पंचायत के कर्मा गांव में सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई है। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ी है। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पटना समेत उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।
3: दिनांक 15 सितंबर को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य मजदूर बेहोश हो गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हर वर्ष राज्य में दो दिवसीय हिंदी समागम का होगा आयोजन। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक दल बिहार में बाढ़ की स्थिति का करेगा सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय। अगले 24 घंटों में पटना समेत राज्य के अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889।

0: 9470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। सलाहकार विपणन, सलाहकार रिटेल संचालन, सलाहकार आईटी और विशेष सलाहकार संगठनात्मक पुनर्गठन। विस्तृत विवरण, आवेदन प्रारूप और अन्य नियम तथा शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cottageemporium.in। दून विश्वविद्यालय मोथरोवाला रोड केदारपुर में आवश्यकता है परियोजना सहायक की। पद, पात्रता मानदंड और अर्हताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.doonuniversity.ac.in। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय में आवश्यकता है ज्येष्ठ मानचित्र संग्रहाध्यक्ष की। दो रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट caomod.gov.in। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO प्रयोगशाला नवीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के इच्छुक उम्मीदवारों से जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। न्यूनतम पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: बीई, बीटेक डिग्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सूचना विज्ञान या समकक्ष इंजीनियरिंग विषय में प्रथम श्रेणी में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से नेट अथवा गेट योग्यता उत्तीर्ण हो या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सूचना विज्ञान या समकक्ष इंजीनियरिंग विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी में दोनों डिग्रियां हासिल की हों अथवा बीई बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या समकक्ष इंजीनियरिंग विषय में प्रथम श्रेणी में एसआईटी से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है www.drdo.gov.in। इसके अतिरिक्त 5 से 11 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक सूचनाएं और जानकारियां देख सकते हैं। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को आवश्यकता है इन पदों को भरने की। उपमहाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, उपमहाप्रबंधक विपणन अंतर्राष्ट्रीय, उपमहाप्रबंधक वित्त एवं लेखा, वरिष्ठ प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन, प्रबंधक आपूर्ति श्रृंखला तथा प्रबंधक प्रशासन। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड तथा नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.glidersindia.in। तटीय जल कृषि प्राधिकरण आमंत्रित कर रहा है अधीक्षक के एक पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। पात्रता शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण की वेबसाइट caa.gov.in। कृषि विज्ञान केंद्र तिरुनेलवेली में कार्यक्रम सहायक फार्म मैनेजर का एक पद रिक्त है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कृषि विज्ञान केंद्र तिरुनेलवेली की वेबसाइट www.rvskvk.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एक
3: चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमेरिकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
5: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
5: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
4: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एक मत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली

0: बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong.
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है?
10: उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
15: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
15: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
15: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
16: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। नदी में डूबने से किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कर्नाटक में बिहारी कहकर गोपालगंज के मजदूर की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर सो रहे अधेड़ को मारी गोली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार की सड़क हादसों पर रोक लगाने और जान माल की क्षति को कम करने के लिए पूरे राज्य भर में अभियान शुरू कराया गया है। इसी कड़ी में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट, यातायात नियमों के अनुपालन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि पिछले सड़क हादसों की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि 2022 में 277 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 248 की मौत हुई, 191 लोग जख्मी हुए। 2023 में 269 सड़क हादसों में 221 लोगों की मौत हुई, 143 लोग घायल हुए। 2024 में 255 दुर्घटनाओं में 202 लोगों की मौत हुई, 207 लोग घायल हुए। 2025 में 243 हादसों में 200 लोगों की मौत हुई, 138 लोग घायल हुए। तो वहीं 2026 में अभी अगस्त महीने तक ही 206 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से 177 लोगों की मौत हुई है और 100 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर प्रशासन ने बल दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के साथ आम नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में गंभीरता बरतने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए नदी किनारे गया था, इसी दौरान पैर फिसल गया और नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव का 14 वर्षीय नौशाद अली बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कर्नाटक में स्थानीय लोगों द्वारा कथित रूप से बिहारी कहकर गोपालगंज के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया गांव का पीर मोहम्मद का 35 वर्षीय पुत्र चांद मोहम्मद है। वह वेल्डिंग का काम करता था और पिछले करीब 3 वर्षों से पुणे में रहकर काम कर रहा था। ठेकेदार के माध्यम से वह वेल्डिंग के काम के लिए कर्नाटक गया था। परिजनों के अनुसार कर्नाटक में किसी बात को लेकर चांद मोहम्मद का कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कथित रूप से बिहारी कहकर प्रताड़ित किया। मारपीट में चांद मोहम्मद गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना 8 सितंबर के रात की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार घटना के अगले दिन सुबह पुलिस ने चांद मोहम्मद को अचेत अवस्था में देखा। इसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन कर्नाटक पहुंचे। चांद मोहम्मद की गंभीर स्थिति देखते हुए परिजन उसे अस्पताल से बिहार लेकर आने के लिए निकले, इसी दौरान रास्ते में इसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सुबह एक गोलीबारी की घटना सामने आई जिसमें एक अधेड़ को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने बाथान में सो रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल की पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी मजिस्टर यादव उम्र 50 वर्ष पिता रामचंद्र यादव के रूप में हुई है। मजिस्टर यादव बथान में सोए थे तभी 3 अपराधियों ने उन पर हमला किया। उनके पास राइफल और पिस्टल बताई जा रही है। अपराधियों के साथ मजिस्टर यादव की हाथाबाई भी हुई, इसी दौरान एक अपराधी ने पिस्टल से उन्हें गोली मार दी। गोली उनके बाएं सीने में लगी है। घटना के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के भाटवां मोड़ के पास एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा जिसके अंदर से 91 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली है। इसमें मोतिहारी के रहने वाले अमीरुल्लाह देवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से बोलेरो गाड़ी में शराब लेकर मोतिहारी की तरफ जा रहा था, तभी भटवां मोड़ के पास उत्पाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और अब इसकी गाड़ी शराब को जब्त कर इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कलवार समाज के द्वारा आयोजित भगवान श्री बलभद्र पूजा का आयोजन 24 सितंबर को धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी की गई है। 21वां श्री बलभद्र पूजनोत्सव कार्यक्रम भव्य तरीके से कलवार महासभा के नेतृत्व में आयोजित होगा। इसको लेकर बैठक की गई और निर्णय लिया गया कि सुबह 9 बजे से पूजा होगी और 11 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 2 अलग अलग मामलों में हत्या के प्रयास को लेकर फरार चल रहे 3 आरोपियों को आज फुलवरिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़ा गया एक आरोपी जमरुद्दीन मियां है जो सलाउद्दीन मियां का पुत्र है और दूसरा इरशाद अली नौशाद मियां का पुत्र है। ये दोनों फुलवरिया के बथुआ बाजार गांव के रहने वाले हैं। इन पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक दूसरे मामले में फरार चल रहे अभियुक्त संदीप गिरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया के ही गोसाई माझा गाँव के दिनेश गिरी का पुत्र बताया जा रहा है। इन पर भी पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इन्हें भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराब तस्करी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी लंबे समय से अधिकारी यहां तैनात हैं उन्हें चिन्हित कर उनको हटाया जाएगा। सभी चेक पोस्ट पर ट्रक पिकअप समेत अन्य वाहनों की आधुनिक तकनीक से जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 2-3 महीनों में पहले की तुलना में अधिक शराब पकड़ी गई है। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। शहर में इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरानी चौक ब्रह्म स्थान के पास गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और यहां पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जा रही है। आज भी कई लोगों ने यहां पूजा आराधना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इसमें रोहित जायसवाल, सागर कुमार, हिमांशु कुमार, रिशु, अमन, यशराज, कृष्णा, आशीष, सोनी इत्यादि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। इसकी जानकारी छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव और मनोज पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि हम सबके सहयोग से भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा आराधना किया जा रहा है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में अब नवजात बच्चों के इलाज की सुविधा को लेकर और बेहतर व्यवस्था की गई है। अस्पताल में संचालित 10 बेड के SNCU को अब नए भवन के फर्स्ट फ्लोर में 17 बेड की क्षमता के साथ वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। बेड की संख्या बढ़ने से गंभीर नवजात बच्चों को अब भर्ती कर वहां इलाज करने में अस्पताल प्रबंधन को काफी सहूलियत मिलेगी। SNCU में जन्म के बाद सांस लेने में परेशानी, कम वजन, संक्रमण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नवजात बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। नए वार्ड में अतिरिक्त बेड उपलब्ध होने से ऐसे बच्चों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी। गंभीर नवजातों को समय पर भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराने में भी इससे मदद मिलेगी। सदर प्रखंड के कोटवा में धर्म पारायण विदुषी और समाज सेवी स्वर्गीय जगरोशनी देवी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रघु रोशनी सेवा संस्थान कोटवा और अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन पटना के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मध्य विद्यालय कोटवा की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल 5 छात्र छात्राओं के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से रघु रोशनी स्मृति छात्रवृत्ति, विपिन बिहारी श्रीवास्तव स्मृति छात्रवृत्ति और भवानी मीरा एवं प्रतिबिंब अभिनव छात्रवृत्ति प्रति विद्यार्थी 1,000 रूपए मासिक छात्रवृत्ति के रूप में दूसरे सत्र की शुरुआत की गई है। पिछले सत्र में चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की अंतिम किस्त भी दी गई। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ नियमित एवं अनुशासित 3, ऑलराउंडर 3 और निर्धन कोटि के 3 तथा चित्रकला के 2 विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी, किताब, कलम, वस्त्र, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सह डिग्री हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को भी उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संस्थान के तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त अपर सचिव आनंद बिहारी प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी ज्योति श्रीवास्तव सहित तमाम गणमान्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ADM अजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे और सेवानिवृत्त DIG RN सिंह ने जगरोशनी देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा की इस पहल की सराहना की। इस कार्यक्रम के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
17: ये रघु रोशनी सेवा संस्थान के द्वारा मातृ स्मृति समारोह आनंद सर के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें स्कूल के भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। आज हिंदी दिवस भी है, बच्चे हिंदी दिवस भी मनाए और मातृ स्मृति दिवस में सहभागिता भी की। सर का ये प्रयास बहुत अच्छा है और बच्चों को मोटिवेट किया गया, बच्चों को उत्साहित किया गया, इसमें बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।
16: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। नदी में डूबने से एक किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कर्नाटक में बिहारी कहकर गोपालगंज के मजदूर की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर सो रहे अधेड़ को मारी गोली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: Thank you. सुनिए सुनिए सुनिए,
19: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
18: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
19: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
20: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
21: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
22: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
23: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
22: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
22: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
23: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
22: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
23: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
25: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
18: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
26: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
24: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
27: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
28: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
29: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
22: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
29: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है। मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, टाइप करना है और फिर सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे यदि आप सभी का मैसेज पहुँचेगा तो। तो यदि आप सुनना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277-1665 पे। यहाँ देखा जाए कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है श्रोतागण की, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से, मुझे गाना सुना दीजिए फिल्म तहलका का। गाने का बोल है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। काफ़ी प्यारा सॉन्ग, आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो मुझे गाना सुनना है, सॉन्ग का बोल है शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरे वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, गाना मेरे महबूब क्या मत होगी फिल्म एक्स इन बॉम्बे, नेम सगीर अंसारी जी इस मैसेज को भेजे हुए हैं तेजपुर आसाम से और डेडिकेट करते हैं, स्पेशल में नाम एक ही दिए हैं, दिलीप राम भाई जी को। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है याद तेरी मेरी प्यार की कहानियां है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि आप इतने सारे नाम देते हैं और आप जानते हैं कि बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है, तो आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन्हीं श्रोतागण के नाम देंगे तो बेहतर रहेगा मेरे समझ के अनुसार। आगे आपकी मर्जी, आप पूरे दिन भर के कार्यक्रमों में जुड़े हुए श्रोतागण के नाम देते हैं तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि फिलहाल जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उन्हीं का नाम दें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आगे जो मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। आगे लिखा गया है कि हेलो जी नमस्ते, शौंग तारों का महबूब अमर से, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मैं भी जुड़ चुका हूँ इस शो से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, हेलो सर हम सफरोज अली आकेल टोला से और आपका भी स्वागत है। सफरोज जी कहते हैं कि वेरी गुड इवनिंग, आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर मैं सन्नी पटेल दलिया से और शंग अखिया लड़ल वजब से दिल में करार नहीं थी। ओह क्यों, क्या हो गया है, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आप सभी से एक और सलाह सुझाव आप सभी के बीच साझा कर दें कि जब आप गाने सुनना चाहते हैं, जल्दी गाने सुनना चाहते हैं, तो आप एक मैसेज किए हैं उसी मैसेज पे स्थिरता बनाए रखें। आपकी फरमाइश हम सीरियल बाई सीरियल जैसे मैसेज शामिल किए हैं वैसे आपकी मैसेज को हम शामिल करते हुए फिर गाने को प्ले करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप स्थिर रहें, इधर उधर नहीं करना है, गाने बिल्कुल प्ले होगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और MD 97 जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इन्हीं के मैसेज हम पहले शामिल किए थे और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं।
दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसी नेट पर 4FM पे सुन रहे हैं हम सभी, और काफी लंबे गाने हैं तो सुन चुके हैं, कुछ ही कड़ी बचे हुए हैं तो रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, क्योंकि कई श्रोतागण की फरमाइश हमारे पास पहुंची है और आगे गाने की फरमाइश किया गया है। गाने का बोल दिया गया है, तारों को मोहब्बत अमर से, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, और कहती है कि आपकी माताजी का तबीयत कैसा है? तो सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल हो चुका है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मैं अंकुश कुमार, मुझे सौतन मूवी का गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनो भैया आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए। MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से बसियों ही सुनाते रहिए। बिल्कुल सुनाते रहेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए, हम क्यों नहीं सुनाएंगे, आप ही लोग के लिए तो हैं हम सभी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश तो हम प्ले करने वाले श्रोतागढ़ की मैसेज तो बता ही चुके हैं, तो गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी निशा की फरमाइश के साथ।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे अभी मैसेज पहुँचा, सोनू बाबू हम भी जुड़ गए हैं भाई, कैसे हैं? तो मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बताएं कि आप कैसे हैं। वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमसी 94.4 FM पे, और आप इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे हुए और कुछ श्रोतागण हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए, सनी पटेल जी, और एक और हमारे श्रोतागण हैं। तो आप सभी से कई बार हम अभी निवेदन कर चुके हैं कि आप एक ही मैसेज करके स्थिरता बनाए रखें, हम आपकी फरमाइश सीरियल बाय सीरियल प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू दिल से मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, शुक्रिया। चलिए आपकी फरमाइश हम सभी ने सुना, अच्छा लगा। और

आपको भी धन्यवाद है। रेडियो रमजी में दर्द भरे गाने फरमाने के लिए। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिए, तो एक एक करके फरमाइश हम प्ले करेंगे, आप स्थिरता बनाए रखें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा लिखा गया है कि सोनू बाबू लगता है कि ये शुक्रिया अब थाने का नाम नहीं ले रहा है। और थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई, ये कह रहे हैं कि ये शुक्रिया अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आने वाले दिनों में देखिए कितने शुक्रिया चलेंगे। बिल्कुल संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि दौर जो चल रहा है इसी का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि विजय कुशवाहा सासा मोसा से राम लखन सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। अगली फरमाइश तेजपुर असम से सगीर जी करते हैं और डेडिकेट करते हैं दिलीप भाई जी को, और गाने का बोल देते हैं मेरे महबूब की आमद होगी।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचा, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज सर प्ले कर दीजिए, मैं सनी पटेल, तो आपको कैसे हम बताएं कि आपसे भी पहले हमारे सुविधागढ़ मैसेज करके बैठे हुए हैं अपने गाने के इंतज़ार में, तो उनकी मैसेज को हमें देखना है। अगर हम इधर उधर करते हैं तो भी कहेंगे कि हमारा नहीं सुनाए, उनका सुनाए। सो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्थिर रहें, आपकी नंबर आएगी तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम दिलीप जी की करते हैं और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है याद तेरी मेरी प्यार की कहानियां है और इसमें कई इनाम दिए हुए हैं, तो चलिए इकट्ठे हम बोलते हैं और डेडिकेट सभी को है। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। सोने भाई नमस्कार, और गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको सोने जी। ओहो, आप हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं दिलीप जी। आपसे हम कई बार बोल चुके हैं कि आप कार्यक्रम से संबंधित बातें करें, और जो पर्सनल बातें बात विचार करनी है वो उन सभी से बात कर लें जिनसे आप बातें करना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। आगे में से पहुंचा हुआ है, और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे। गाने के फरमाइश करते हैं सफरोज अली आखिल टोला से, और गाने का बोल देते हैं

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का वेरी गुड वेरी बैड। गाने सुन रहे हैं सफरोज अली जी की फरमाइश थी और यहाँ पे आगे कई मैसेज है और आगे कई मैसेजों में गाने की फरमाइश यहाँ पे किया गया है। अंकुश कुमार जी गाने का बोल देते हैं, मुझे सौतन मूवी से गाना सुनना है, मैं तेरी छोटी बहना हूँ ना समझना मुझको सौतन। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज कही है और लिखा गया है कि अब किसी से दिल लगाने का मन नहीं करता, टूटे हुए दिल को समझाने का मन नहीं करता, जिसने सिखाया था प्यार पर भरोसा करना, आज इस पर भरोसा करने का मन नहीं करता। सोना भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप? तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से। चलिए पंद्रह हमारे साथ अंतिम गाने के साथ एंजॉय करना है, लेट कर दिए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और इस मैसेज को पहुँचाने वाले लिखे हुए कि तोड़ेंगे गुरूर इसका हम इस कदर सुधर जाएंगे कि खिड़की तोड़ेंगे गुरूर इसका हम इस कदर सुधर जाएंगे कि खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में हमारी, हम सामने से गुजर जाएंगे, तरस जाएगी उनकी निगाहें एक आखिरी झलक को हमारी, हम इस कदर देखेंगे उन्हें पर पहचानने से मुकर जाएंगे, फिर ओ जलाएगी दिए हमारी यादों के अपने दिल में, हम एक तूफान बनकर आएंगे और सब बुझाकर चले जाएंगे, फिर इतनी सस्ती नहीं होगी मोहब्बत हमारी, क्योंकि ओ तो क्या फिर खुदा भी पुकारे तो सोचकर जाएंगे। और इस मैसेज को किए हुए हैं बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी। अच्छी लाइन है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए। तो आज तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहें अंतिम गाने के साथ, इंजॉय करें और हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, तब तक इंजॉय करें। नमस्कार।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह, वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: रेडियो रिमझिम,
1: सुनो दिल से।
2: मैं कायन, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिड वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 11 बजने को है, समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
4: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
3: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
1: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts, where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
0: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress, but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual, he added. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah has said that Chhatrapati Shivaji Maharaj made Swaraj, Swadharma and Swabhasha, self-rule, one's faith and one's own language, the fundamental elements of Swaraj. Addressing Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today, the Union Home Minister highlighted Maharashtra's rich linguistic and cultural heritage. He said, Shivaji Maharaj gave Marathi prominence in administration and created a strong repository of terminology in the language, which became an important foundation of governance during the era of Hindavi Swaraj. Greeting people on Hindi Divas and Ganesh Chaturthi, Mr. Shah described their celebration on the same day as a Manikanchan Yog, an auspicious coincidence. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.

0: एह उमर के उमंग में सनहिया के रंग में अतु दूसरा के संग में जाता रहा अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल।
1: चुप रह, हमके माफ कर दो।

0: जाता नहीं जान, अपन ख्याल रखिया।
1: जान, अकेले खुश रहिया।
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
3: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: आवनतनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: भैया, वो ना डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस दो मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हेलो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: इसे करें हम
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: और क्या हाल चाल है मैडम?
6: जी जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
5: बढ़िया है। और बारिश हो रहा है भोपाल में?
6: नहीं बारिश।
5: आज की फरमाइश तारीलाल का फिल्म में का है कोई?
6: कौन सा?
5: खेसारीलाल का वो कोई फिल्म में का गाना है, उसको गा करके बता दे क्या?
6: जी बिल्कुल।
5: हम धरती के राजा दुरानी नील गगन के, हम धरती के राजा दुरानी वाली गाना है।
6: और गाइए, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
5: और याद नहीं है मैडम?
6: चलिए कोनो बात नहीं है, और गाना बताइए। ओके ओके, सुनवाए के भी चाहता नहीं।
5: तो पहले आपको सुनवाना है ना, फिल्म का गाना है उसका।
6: जी जी।
5: हाँ, कोई फिल्म आया था, हम देखने के लिए गए थे श्याम हॉल में। तीन दिन हम लोग देखे थे लगता।
6: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
5: जी ठीक है, ओके मैडम,
6: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम
1: 90.5 FM
0: जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया। तो
1: क्रांति का कोई गाना बजा दीजिएगा, सब गाना अच्छा।
0: क्रांति में का कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ, हमारा ठुमका बदल गए चाहते भी, आपके जो इच्छा है जो भी गाना अच्छा है।
0: नहीं,
1: कर दीजिए,
0: आप ही बता देते तो सही रहता।
1: यही जो बताए, हमारा ठुमका बदल गया चाहते।
0: क्या ये आप दुलाई मुझे गा के बताएंगे?
1: वही जो बताए वही।
0: जी जी, वो तो ठीक है, आप दुलाई मुझे गा के बताते तो शायद सही रहता।
1: यहाँ पर दूसरी नहीं बैठा है हमको, चलो चलिए ठीक है, दूसरी बार गा लीजिए।
0: चलिए ठीक है। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
1: रजाक है, रफीक है, नूर मोहम्मद है, इम्तियाज है, और आप है, आपका टीम है। उस दिन जो सोमवार को रिकॉर्डिंग किए थे वो टावर नहीं मिल रहा था, पता ना जो दोबारा लग भी नहीं रहा।
0: जी
1: याद है ना,
0: जो सोमवार को जो रिकॉर्डिंग हुआ था तो बच चुका है।
1: बच चुका है, मैं सोचा की रिकॉर्डिंग कुछ गर्ज फिल्म का बताया था, हम सोचा की चलिए रिकॉर्ड गया तो रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं इसलिए।
0: जी तो आप गाना बताएंगे तो रिकॉर्ड हुआ होगा, थोड़ा देर से बच गया होगा। चलिए फिर तो ये वाला गाना आप प्ले करते हैं।
1: ठीक है
0: जी, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.7 में।
1: जी, हमको गाना सुनना है मैडम।
0: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम है मन्नान, कपरपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी, और कैसे हैं आप?
1: पहले से उतना अच्छे नहीं है।
0: क्या हो गया है?
1: पहले से उतना अच्छा नहीं है इसलिए कि आजकल कॉल हम नहीं कर रहे हैं गाना के लिए।
0: अच्छा जी, ऐसा क्यों?
1: आज क्या मन में आया है कि कॉल कर रही है?
0: जी, तो कोई प्रॉब्लम हुआ जो कॉल नहीं कर रहे?
1: नहीं हुआ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वो जो 1 बजे वाला 12 बजे वाला प्रोग्राम में आप लोग कॉल उठाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम है?
0: अच्छा जी, तो क्या है ना कि अलाउ नहीं होगा, इसीलिए भारती जी कॉल नहीं उठाती होंगी।
1: हाँ वही। अच्छा, भारती जी नहीं बोल रही, मनोरमा बोल रही है?
0: जी हाँ।
1: अच्छा हाँ, तो एक शिकायत तो था, हम समझे कि भारती जी है, उन्हीं को शिकायत सुना रहे थे हम।
0: अच्छा जी, कोई बात
1: है ना, तो हम नहीं समझे थे कि मनोरमा जी है, है ना?
0: जी,
1: तो कोई बात नहीं है। अब वो रहती तो उनसे हम शिकायत करते और थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें कोई नहीं है, तराजगी नहीं है, है ना? और रही बात कि हमको ये गाना सुनना है मैडम, ई आई का बहुत गाना बना है, तो ये गाना है मार दिए जाए कि छोड़ दिए जाए, ए आई वाला गाना है ना मैडम, यही गाना सुनवा दीजिएगा ना मैडम। अच्छा, आप कौन कौन से प्रोग्राम में आती है मैडम?
0: मैं तो ऑल प्रोग्राम चलाती हूँ, लेकिन अभी तो 12 बजे वाला शो नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको भी तो बनाना पड़ता
1: है। इसके बाद कोई प्रोग्राम में आप नहीं है?
0: नहीं, इससे पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं है।
1: ओ, आपको यही प्रोग्राम दे दिया गया कि आप यही बनाओ और बजाओ? है तो मिलना चाहिए, और भी कोई प्रोग्राम तो मिलना चाहिए, जैसे उनको जो है भारती जी को मिला है तो 1-2 प्रोग्राम तो करती है, आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको भी कुछ दिन हो गया रेडियो स्टेशन में काम करते हुए। वैसे तो रेडियो इंजन तो बहुत ऊंचाई पर तो चला गया है, और रहा के जो जो आदमी आ रहे हैं तो उन लोगों को प्रोग्राम मिलना चाहिए, कोई कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर आता है उसे सवाल जवाब करना, कोई कोई बात पे जो है सवाल जवाब करना, या कोई आर्ट बनाना, है ना? तो ये सब होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ज्यादा विशेष बात नहीं है मैडम, यही बात था कि हमको अभी आई वाला जो है गाना वो सुनवा दीजिएगा।
0: डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट तो अब क्या चाहे, मनोरम जी के खास ये गाना रहेगा मेरे तरफ से, डेडिकेट मार दिए जाए कि छोड़, और किसी को नहीं देंगे, आज मनोरमा जी को दे रहे हैं डेडिकेट ये गाना। आप गाना को फुल इंजॉय कराइए, सुनाइए गाना, ताकि हम भी सुन ले, आज बज जाएगा मैडम।
0: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा।
1: हाँ, तो पूरा कोशिश करके आज बजाइएगा, 5 बजे एकदम रेडियो खोल के आप बैठे रहेंगे।
0: जी जी, बिल्कुल ले करते हैं गाना आपका, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.5 FM में।
1: नमस्ते। गाना सुनाए?
0: गाना सुनाएंगे। नाम बता दीजिए अपना।
1: साहिल कुमार अहमदा।
0: साहिल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अहमदा।
0: अच्छा, साहिल जी क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कॉल कर रहे थे।
0: अच्छा, तो चलिए कॉल तो लग गया है। क्या है आपकी सुनाई?
1: सैयारा फिल्म का कोई भी गाना बजा दिया।
0: कोई भी? और सुनाना भी चाहती हूँ किसी को,
1: जितने भी रेडियो रूम में।
0: ओके साहिल जी, तो फिर मैं गाना प्ले करती हूँ आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रूम 90.5।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग,
6: बात नहीं बोल रही क्या?
5: नहीं जी, मैं मनोरमा।
6: ओ मनोरमा मैम, थैंक यू मैम आपको गाना सुनाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारी बहू का बहुत अच्छा गाना सुनाई जन्मदिन पे, बहुत अच्छा लगा मैम।
5: जी
6: तो मैम, अभी क्या हो रही है आप?
5: कुछ नहीं, बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
6: ओ नाश्ता तो हो गई?
5: जी जी, और आपकी है?
6: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस नाश्ता तो करके अभी बैठे, कॉल लगा रहे थे, बिजी बिजी बता रहा था। हम तो सोचे कि आज लगेगा नहीं, कम से कम मैम को थैंक यू बोल दे गाना बजाने के लिए। मैंने एक गाना सुनना था आज।
5: जी बता दीजिए।
6: वो गाना है शोले फिल्म का, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
5: क्या गाना आप मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
6: हम तो गाना गाते ही नहीं, आप बोल रहे थे हम क्या?

0: नहीं नहीं गाना सुनना था मैम
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
0: कहाँ गाए मैम, बहुत अच्छा, बहुत गंदा गाना गा।
1: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप।
0: बस हम चाहते हैं कि बस आप लोग तो इसी तरह से प्रेम मोहब्बत बना हुआ रहे, बस हम लोग को मनोरंजन करते रहे। मैम ये गाना कब तक बजेगा मैम?
1: ये गाना आपको शाम को चलेगा?
0: नहीं आप तो बोलते हैं शाम को और तीन दिन बाद बजता है मैम।
1: आप क्या करिएगा, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो आगे पीछे हो जाता है।
0: हम इंतजार करते रहते, अब मेरा गाना आएगा, अब मेरा गाना आएगा। जब नहीं गाना आता तब एकदम उदास हो जाते हैं। फिर सेकंड दिन इंतजार करते, अब आएगा अब आएगा, फिर भी नहीं आता। फिर थर्ड दिन आता है गाना, हमें बहुत खुशी होती है।
1: सुना दिया जाता है ये गाना आपका, दो दिन में सुना दिया जाता है, या तो आज नहीं तो कल।
0: तो आज तो फ्राइडे है मैम
1: जी,
0: तो मंडे को हो जाएगा ना, सैटरडे को हो
1: जी।
0: मैम बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी मिलती है। बहू भी बहुत खुश थी कि हमारे जन्मदिन पे आप गाना, बहुत नाइस सॉन्ग था मैम, बहुत नाइस सॉन्ग। हमने बोले थे कि आप अपना पसंद से एक गाना गाइए, बजवाइएगा, बहुत अच्छा लगा मैम। इसके लिए बहुत थैंक यू, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह हम लोग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू मैम
1: जी, मोस्ट वेलकम। वैसे नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम है शंकर गुप्ता, मैं गया जी से बोल रहा हूँ, बोध गया से।
1: अच्छा जी
0: जी, तो जी मैम, थैंक यू मैम।
1: गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: गाना सुनेगा मैम।
1: जी गाना सुना, नाम बता दिया अपन।
0: सुधीश कुशवाहा।
1: सुधीश
0: जी।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैम
1: तो नाश्ता भैया
0: नाश्ता खराब सब हो गई। आप कौन?
1: हमारे भी हो गई
0: बाल। प्रोग्राम लेके चलो
1: वो भी चली बहुत जल्दी, दो तीन दिन में वो चालू हो जाए।
0: आजकल हमारा था नहीं इसके साथ
1: तो फिर आवाज की फरमाइश
0: फरमाइश सुना दी। अलका जाए जाना तीन के ठहर पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: कौन सा?
0: तीन के ठहर पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: तारीख जाना गा के बता सकते नहीं?
0: हाजिर ना गया देसी की उतना बढ़िया गाना याद रह लगे गाओ।
1: अच्छा अच्छा, चलो एक बात नहीं चल रही गाना क्योंकि सुनाए के भी चाहते नहीं। ओके तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: जी मैम।
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।

0: मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं,
2: मनोज मैम बोल रहे हैं।
1: जी,
2: कैसी है मैम?
1: जी मैं खुश हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
1: जी सब कोई बढ़िया है।
2: जी मेरा नाम पप्पू कुमार है, पड़रौना बढ़रिया से बोल रहा हूँ। तो मैम गाना सुना दीजिए हमको।
1: बता दीजिए।
2: तीज का गाना कुछ अच्छे कलाकार का सुना दीजिए।
1: तीज का?
2: जी जी।
1: और जो गाना ये बताया वो डेडिकेट भी है?
2: वो रेडियो रिमझिम जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी सुनेंगे। और मैम आज बज जाएगा?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
2: जी कैसे, आज हम जा रहे हैं गोपालगंज ही, तो सुन रहे थे कि वहीं से हम सुन ले आज।
1: बिल्कुल
2: ठीक है मैम, तो गाना सुनवा दीजिएगा और तीज के सभी भाई और बहनों को बधाई।
1: जी जी, आपको भी।
2: जी मैम।
1: जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: जी।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 95.4 FM में। अभी कैसे हैं आप?
1: तो
0: क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो शॉपकीपर की नौकरी करता हूँ बाराबंकी।
0: अच्छा जी, तो क्या है आपकी फरमाइश?
1: फरमाइश है, गाना है ना, तुम याद आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो
0: जी।
1: सुना
0: गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
1: गाना अपनी वाइफ को, आपको, तमाम रेडियो रिंग सुनने वाले श्रोताओं को और रेडियो रिंग परिवार को।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं आपका सुंदरी सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
5: सलाम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: कैसी हैं मैम?
6: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
5: जी हम भी अच्छे हैं। मनोरमा मैम
6: जी,
5: हेलो माय चॉइस में आपका भी स्वागत है हमारे साथ।
6: जी जी जी।
5: और बताइए मैम, नाश्ता हो गया?
6: हाँ नाश्ता तो हो गया, और आपका?
5: जी हमारा भी हो गया। चलिए तो नाम बता सकते हैं। मेरा नाम सफरोजली, गोपालगंज से बोल।
6: जी जी, गोपालगंज में कहाँ?
5: गोपालगंज में गाँव है आटिल टोला, वहीं से। अभी फिलहाल मैं गोपालगंज टाउन में ही है।
6: कहाँ, किस जगह?
5: फिलहाल मैं अभी चंद्र रोड में है।
6: अच्छा, तो वहीं करते हैं?
5: नहीं, घर तो हमारा आकिल टोला गांव में है।
6: तो फिर यहाँ पे
5: काम करते हैं मैम।
6: अच्छा जी,
5: शॉप है अपनी।
6: चलिए बहुत अच्छी की बात है
5: जी। हम कहीं भी रहते हैं रेडियो सुनते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं।
6: जी जी, चलिए आपको दिल से धन्यवाद।
5: मैम एक बात बताते हैं आपको, मतलब रेडियो हमको इतना लगाव हो गया ना, इसके अलावा कुछ भी सुनने का हमको मन ही नहीं करता। हाँ मैम, आज तो चले ना चले लेकिन सुनते रहते हैं।
6: वो भी बहुत जल्दी चलने वाला है।
5: वाला तो नहीं चल रहा है तो मन नहीं लग रहा है मैम, कोशिश कीजिए चलाने का।
6: जी जी, बहुत जल्द चलेगा।
5: और ये तो चलता ही रहता है मैम। तो हमको आज एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए, हिंदी तो हमेशा सुनते ही है।
6: बता रही
5: है। गाने का नाम है याद है, गाने का नाम है याद और प्रमोद करेनी का आवाज है, यही सुनना है।
6: गाने के बोल,
5: गाने का बोल यही है याद, ऐसा ही कुछ नाम है गाने का।
6: क्या बोलेंगे कि नहीं बता सकते हैं?
5: ये वाला गाना तो हमको खुद याद नहीं, लेकिन कहीं पे सुने थे, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए सोचे कि यही वाला सुन ले आज। याद ऐसा ही करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा।
6: ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
5: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, भारती मैम को और सभी रेडियो दोस्त को। कोई हमको तो डेडिकेट करता नहीं, लेकिन हम सबको करते हैं।
6: और सब कोई करे,
5: और करते चलते तो ये एक बात बोलेंगे मैम। उस दिन मेरा फर्स्ट टाइम बजा थी, इसके लिए हम इतना खुश है, आपको मतलब बता नहीं सकते कितना खुश है, लेकिन बहुत खुश है।
6: चलिए,
5: बुधवार को फर्स्ट टाइम बज गया मेरा। हाँ मैम, फर्स्ट लगाए हैं, 2-3 मिनट पहले से लगा रहे थे।
6: चलिए प्ले करते हैं गाना।
5: जी मैम, हमको रेडियो का रूल पता हो गया है, इसलिए बहुत पुराना है, इसलिए कैसे कब कॉल करना है। चलिए मैम, तो एडवांस में धन्यवाद।
6: तो प्ले करते हैं।
5: बाय
6: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। ठीक था, अपन बताएं।
1: ठीक हुआ।
0: क्या तबियत ठीक नहीं किया जी?
1: ठीक हुआ।
0: बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा, हाँ हो गई बार और भैल। चलिए ठीक है, तो क्या बात की फरमाइश?
1: हिंदी सॉन्ग बजा दी कौन?
0: अच्छा, बहुत आवाज स्लो आवा था।
2: अच्छा, पूछ
0: हेलो
1: बोली
0: का कुछ बोल बका जी? आज खुश नजर नहीं किया तो कुछ तो बात बात
1: बनी है इसे।
0: चलिए ठीक
2: है, सूते के में फोन लगल है
0: तनिषा जागलो ओके मुई से।
2: जन जन क्या बोल जाए, फूलवा धरा के हम एकरा चौकी पर रख के चल बनी है। हम कहीं ना बती दी बाकी पति आवे लगल है।
0: चलिए रोगा लो अपना में झगड़ा कर ले, हमरा से झगड़ा थोड़ी बा।
2: हां ई तो बात सही बा।
0: चलिए कोनो बात ना, लड़ाई ना कोई गला। और गाना जन बतनी है कि सुनाए के विचार तनी।
1: हां सबसे पहले रोगा के भारती दीदी के सोने दीदी के जितना सुनता है लोग लोग के और हम सुन।
2: मनन दीदी
0: हां जी,
2: एक स्पेशल बेंटे साने के मिठाई लिया किया जन तो ना खी लिया। हां
0: मिठाई आ जी शाम के।
2: हां
0: और ये अपन भैया के ना सुनाए
1: ना।
0: अच्छा चलिए ठीक बात।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते जी।
6: नमस्ते। खाना रोज से खाए कि हम
5: ना
6: कहाँ फोन आई था
5: ना फोन आई लगा देखिए पानी पिए थे
6: कैमरा लगे मानी क्या
5: कैमरा नहीं लगे मैंने और मानी की पानी पिए थे फोन ना उठा कोई नहीं है।
6: हाँ हो सकता
5: है। आधा 20 से 25 मिनट होता और ना उठानी तो हम बताएंगे फोन
6: ना झगड़ा मत करी लो, मान जान थोड़ा देर बाद। अभी तो अपना नाम बता दी। कहाँ से?
5: फरमाइश कौन सी क्या बात बताएंगे?
6: कौन सा?
5: भोजपुरी सॉन्ग।
6: भोजपुरी में कौन सा?
5: भोजपुरी में अभी बता दी, जय ना पूरी बुआ बोला जदुआ मारे बंगली बता
6: दी। अरे गाके बता सकते
5: नहीं है ना लगे
6: माँ समझ में ना आई फरवरी बता दे।
5: मारे यही सुनने के बाद
6: जी यसन मारे के भी चाहत नहीं क्योंकि
5: सबसे पहले दरवाजा के और स्पेशल में करिश्मा दी के, सोनी दीदी के, भारती दीदी के और पूरा रेडियो रेडियो के सुनने है। रौजा आजकल छुट्टी नहीं थी मतलब क्या दिनों मेला घूमने का थी। हाँ ऐसे रोज रोज मेले का।
6: हाँ करे इंजॉय। चलिए तो फिर और गाना प्ले करता नहीं।
5: ठीक बात।
6: नमस्ते।

0: बहुत सारा 94
1: और बताइए
0: सब बढ़िया है। आप बताइए अपना, आप कैसे हैं?
1: प्रभु की कृपा चल रहा है। आपको प्रोग्राम सुनने मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी,
1: आपका क्या नाम हुआ मैडम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा जी है
0: जी।
1: और कोई भारती जी है?
0: हाँ हाँ उतनी है।
1: वो भी आती है
0: जी।
1: अच्छा तो ये बताइए कि मेरा ये फरमाशी वगैरह कब सुना रहे
0: जी?
1: आप गाना मेरे को कब मिल जाएगा? फरमाशी जो बोलूंगा
0: ये गाना आपका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा दोनों दिनों में।
1: हाँ
0: जी।
1: आज का समय चला गया?
0: नहीं आज भी बच सकता है, अगर बहुत सारे कॉल आएंगे तो कॉल आगे पीछे हो सकते हैं।
1: अच्छा नहीं तो कल 9 बजे से?
0: नहीं शाम को 5 से 7 के बीच।
1: शाम को 5 से 7 के बीच आज नहीं तो
0: आज भी चल सकता है।
1: अच्छा आज भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है?
0: नहीं
1: ऐसा नियम हो ना कि जिस दिन हम फरमाइशी करते हैं उसी दिन शाम को गाना आ जाए तो अच्छी उत्तर हो।
0: जी जी वो तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: जैसे हम आज अभी रिकॉर्डिंग करवाया, अभी फोन से बात किया और हमारा शाम को 5 बजे गाना मिल जाए मेरा पसंद का, वो आदमी एकदम मैंने उसे कोई ठिकाना नहीं कब मिलेगा, तो फिर आदमी विचलित हो जाएगा ना।
0: जी जी बिल्कुल, तो वैसे ही होता है लेकिन
1: आप लोग का भाई गोपालगंज में रेंजिंग स्टेशन 4 चांद लगा दिया है और आगे बढ़ेगा। ये तो बात मानना पड़ेगा भाई, शिवा जिला बसौली से बोल रहे हैं
0: जी। तो क्या आप रेडियो रेंजी में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं एक बार इसको पहले भी किया था लेकिन मेरा फरमाइशी आया ही नहीं, कब आया पता ही नहीं चला।
0: अच्छा जी तो सुने नहीं होंगे आप?
1: नहीं सुने नहीं, 2-3 दिन लगातार हम सुने लेकिन वो क्या ना है प्रभु की कृपा से मेरे को कब आया कब नहीं गया पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर डिटो रहेगा ना कि आज शाम को मेरा फरमाइशी पूरा हो जाएगा या कल शाम को पूरा हो जाएगा या सुबह पूरा हो जाएगा कल 9 बजे मतलब शाम को ही पूरा होता है सुबह होता है
0: जी। आपका ये कॉल जो रिकॉर्ड करा रहे हैं शाम को भी पूरा हो सकता है?
1: नहीं तो कल शाम को?
0: नहीं तो कल शाम तक फिक्स है।
1: अच्छा कल शाम को फिक्स है। 5 से 7 का हम इंतजार करते हैं और मेरा गाना का है यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा की गोरी मैं क्यों काला।
0: जी वैसे आप अपना नाम नहीं बताए?
1: हाँ जी मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, आप पूछे नहीं मेरे को।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: और मैं हूँ यहाँ तेलिया बसौली नवीन बाजार से।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: ये हरदिया से पश्चिम पूरब पड़ता है।
0: अच्छा जी।
1: हरदिया मोड़ से पूरब पड़ता है 6-7 किलोमीटर बसौली
0: जी।
1: जी मैं वहीं से बोल रहा हूँ और मेहरबानी करके अब मेरा गाना सुनाइए ताकि मेरे को खुशी होगा, बाकी का गाना आदमी नहीं लेता है लेकिन आप लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है वो कुछ और है।
0: जी जी तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये गाना आपका आज ही चले।
1: आज प्रयत्न कीजिए, आज शाम को 5 बजे चल जा रहे थे कल तुम्हारे श्योर 100% मैं आज 5 बजे और कल 5 बजे में इंतजार करूंगा आपका। है
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए ओके थैंक यू।
0: और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त जो सुनेंगे सारा तो मेरा पूरा रिंझिन का सोता है सब, तो मेरा दोस्त है सब सुनेंगे, अकेला आप थोड़े सुनेंगे, आप भी सुनिएगा।
0: जी बिल्कुल। तो फिर प्ले गाना आपका?
1: हाँ जी प्ले कीजिए।
0: रेडियो रिंझिन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार,
6: क्या हाल खबर है जी?
7: जी बिल्कुल बढ़िया।
6: आवाज पहचानी आपने?
7: पहचाना सा तो लग रहा है।
6: बताइए।
7: सही बताते हैं, आप ही बताते तो सही रहता।
6: पहचान भी गई है मनोरमा दिया करेंगे थी, आप ही बता दीजिए।
7: पहचान गए लेकिन कहीं कुछ और नाम रख दे आपको बुरा लगे।
6: कहा बुरा लगेगा, एक बार बताइए तो सही।
7: जी जी, तो मैं आपको बता दूँ की आप दिलीप जी बोल रहे हैं ना?
6: जी दिलीप जी ही बोल रहे हैं। मैं तो 11 बजे 10 मिनट ट्राई करते करते 11 बजे 16 मिनट हो गया। उस समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा है। जिस तरह की सबको 10 मिनट से लगता है ट्राई करने के लिए। और बताइए कैसी हैं आप?
7: मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया हैं, बस अभी गाड़ी पार्किंग से निकाले हैं, सोचे हैं कि पहले मनोरमा जी से बात कर ले उसके बाद निकले हैं। क्या है कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को सभी आदमी को प्रतीक्षा रहता है आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकती, कॉल के माध्यम से ही बात हो सकती है।
7: जी जी।
6: तो मौसम कैसा है अभी दोपहर में? यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
7: इधर मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
6: तो बारिश होने की चांस है कि नहीं?
7: बारिश तो होगी ऐसा तो लग रहा है।
6: मौसम हो रहा है बारिश का। और भारती जी का क्या हाल चाल?
7: वो भी ठीक है।
6: चलिए बढ़िया ही होनी चाहिए, आप दोनों खुश और खुशहाल रहे हैं।
7: हम लोग भी
6: चलिए, ऊपर वाले की दुआ होता है, सब ऊपर वाले की कृपा होता है, लेकिन नीचे वाले का वही होता है कि मुख से आवाज आता है कि हाँ आप लोग ठीक रहे, तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ आवाज निकलती रहती है। तो नशापन सही से हुआ ना?
7: हाँ हाँ हो गया। रात किए हैं?
6: हाँ हाँ हम भी किए हुए हैं। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बढ़िया से किए हैं कि नहीं। तो 12:30 तक आपको जो है ना कॉल से बस आपको जवाब करना पड़ेगा। पानी साथ में लेके बैठिएगा ठंडा बोतल, कहीं खराब ना हो
7: जी।
6: तो एक जाना है हमारी दुलारिया हो चले जाइए ना सेवा करके। हम
7: क्या बोलेंगे के बता सकते हैं?
6: इसका बोल है हमारी दुलारिया चली गई हम के हमार ओकरा बाद जेकर बानी ले गई है लास्ट में बटे। तो ये भोजपुरी बहुत अच्छा गाना बटे, कहीं ना देगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं और सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मीका भारती जी हैं, सगीर अंसारी, महबूब आलम, मुस्तफा आलम, सोनू भाई, आजाद भाई और अफसर भाई हैं, अहमद भाई हैं, उसके बाद जो है अफसरी जी हैं, और सभी दोस्तों के गाना जो रिक्वेस्ट है तो सुना दीजिएगा। बाकी जो है और भी लाइन में लगे होंगे, तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
7: जी नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जिम 90.4 एफएम में।
1: मनोरमा मैम प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: एक क्वेश्चन बने, हम गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी बिल बनी अपन बताए।
1: पहचाना था नहीं?
0: हाँ हाँ पहचाना था नहीं।
1: अच्छा क्वेश्चन बनी, तबियत पानी
0: सब ठीक ठाक बा? हम ठीक बनी।
1: मौसम बदला था?
0: ठीक बनी न?
1: ठीक है बनी। काम तो बनी, आज तक जल्दी लग गई, 18-20 बार में लग गई।
0: हाँ वे कहे ला रही थी बड़ा जल्दी लग गई है।
1: 18-20 बार लगनी तो लग गई हम लोग निश्चिंत हो जाए, टेंशन ना रही।
0: खाली तो सब बताए
1: नाश्ता कह के आदमी 9 बजे काम पर लगेला, नजदीके बा काम, नजदीके बा 2 मिनट लगेला आवे में। नाश्ता पानी कह के आदमी 9 बजे आई, ओकर बाद काम पर लगी। अभी एगो टेंशन रहे लगी फोन लग जाए, एक बाद में काम होते रही नाश्ता पानी के।
0: हाँ हो गई बा। चलिए तो क्या बात की फरमाइश।
1: आज तो रउड़े के सुनावे के बाद चुन के रख ले मैंने एकदम रौड़े खातिर, वही तो बताये।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताये।
1: रौड़ा रौड़े अपने से फरमाए
0: ना ना फरमाइश हम बजाय बताये तो पहले।
1: अरे हमारे ये फरमाइश हुआ की सासुर के न खरा ससुरा में झेल के पड़ी, कनो करबू पढ़ाई रुपया के नहीं के पड़ी।
0: अच्छा ये गाना?
1: हाँ ये गाना।
0: चलिए गाना तो ठीक,
1: खास करके रौरा के आरती जी के आयु केहू के नहीं सुनाये के।
0: हाँ
1: आयु केहू के नहीं सुनाये के, तुम ये आदमी सुनाये को।
0: अच्छा अच्छा ठीक बा
1: सुना दे हम। ये बड़ा की अच्छा
0: के
1: हमारा अगला हफ्ता चली
0: काहे
1: का तो लास्ट में चलो था
0: ना ना लास्ट में ना चली ठीक बात। तो चलिए प्ले कर देना और गाना।
1: ठीक है प्ले करो। ठीक है। We'll be right back.

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार,
6: मैं रमार गुप्ता पिल्ला खास से बोल रहा हूँ।
5: जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मिजाज का मौसम हुआ है, मिजाज का बहुत बढ़िया मौसम हुआ है।
5: अच्छा,
6: जी सुना है,
5: बता दीजिए।
6: गुलाम अली का कोई बढ़िया सा गजल
5: आप बता देते तो सही रहता।
6: गुलाम अली का कोई गजल हो और सुनवाना चाहते हैं सतीश साइकिल दुकान असंदापुर चौक और शंकर भाई श्री सिंह हरपुर।
5: अच्छा चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
1: और मैडम क्या हाल
0: जी? सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है, मजे में है, काम कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं?
1: सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: आज फरमाइश हमको बोल राधा बोल का, वही टाइटल सॉन्ग है, बोल राधा बोल, तुमने ये क्या किया। ये गाना सुनना होता है, सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: जी,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।